0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। ঘণ্টেক পাছতে হিন্দী বাতৰি আৰু 6:05 ইংৰাজী।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই জয়া ভাৰতী। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे।
1: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। घर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइन 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
4: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, is Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
3: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
5: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
3: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रही हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुस जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6ठे चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं की डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमार के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति की कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमार और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
6: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
7: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
3: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमार के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
8: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराध्य की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल एसएडी को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर 3रा स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
9: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कुंकड़ी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
3: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर

0: मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद कनक। नीट UG पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजीलॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इंकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, DK शिवकुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धरमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा। हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस। सेंटर आस्क्स ऑयल मार्केटिंग कंपनीज टू बिल्ड 30 डेज LPG रिजर्व्स एज वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट परसिस्ट्स। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे शोज मेजर गेन्स इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। Institutional deliveries rise to 90.6%. Myanmar President Min Aung Hlaing to arrive in India this morning on a 5-day visit. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms across several states in the country today. Indian athletes shine at Asian Under 20 Athletics Championships in Hong Kong. Clinch 7 medals including 4 gold on day 2. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Rajasthan Royals by 7 wickets to set up title clash with Royal Challengers Bengaluru. The government has asked the public sector oil marketing companies to set up liquefied petroleum gas LPG reserves for at least 30 days as the West Asia conflict persists, disrupting global energy supplies. Joint Secretary at the Ministry

0: আকাশবাণীত বিজ্ঞাপন দিয়ক অগণিত শ্রোতার কাষ চাপক।
1: Our voice gets you heard everywhere.
0: বিজ্ঞাপন জনসাধারণক সজাগ কৰিবলৈ আৰু চৰকাৰী আঁচনিৰ বিষয়ে অৱগত কৰাবলৈ আমাৰ ফোন নম্বৰটি হৈছে
1: 6900453528।
0: আকাশবাণী গুৱাহাটী, সর্বক্ষণ সর্বত্র আপোনাৰ সৈতে।
2: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পাছতে হিন্দী বাতৰি, 12:05 ইংৰাজী বাতৰি আৰু 12:10 পৰা সৈন্য বাহিনীৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠানসমূহ শুনিবলৈ পাব।
3: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই লাভলীন নিগম। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
4: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
3: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में कहा कि देश में एलपीजी की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यभार मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के निर्देश दिए हैं। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
5: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
3: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजासुब्रमणी उनका स्थान लेंगे। गुजरात टाइटंस IPL क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा न केवल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार आतिथ्य सत्कार के लिए प्रसिद्ध है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अवसर उन सभी को याद करने का है जिन्होंने राज्य की प्रगति और पहचान के लिए अथक परिश्रम किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पत्रकारों, लेखकों और हिंदी भाषा के समर्पित प्रबुद्ध व्यक्तियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचे और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: The news read by Shagun Chopra. Myanmar President U Min Aung Hlaing arrived in Bodh Gaya today as part of his 5-day visit to India. During the visit, he offered prayers at the world-renowned Mahabodhi Temple and the historic Sujata Temple. The president will also visit various Myanmar Buddhist monasteries in Bodh Gaya. Earlier, Bihar Agriculture Minister Vinay Kumar Sinha accorded a warm welcome to President U Min Aung Hlaing at Gaya Airport. The Karnataka Congress Legislature Party is scheduled to meet in Bangalore at 4 p.m. today to elect its new leader to succeed the outgoing Chief Minister, Mr. Siddaramaiah. Governor Thavarchand Gehlot has already accepted the resignation of Mr. Siddaramaiah, asking him to act as a caretaker until a new incumbent is chosen. Our correspondent reports that Mr. D.K. Shivkumar is likely to be formally elected as the new leader of the Congress Legislature Party. The 136 Congress MLAs have been asked to attend the CLP meeting. AICC General Secretary and Karnataka in charge, Randeep Singh Surjewala, will be the observer. Once the CLP chooses its new leader, he will meet the governor to seek permission to form the new government and finalize the date for the swearing-in of the Council of Ministers. Chief of Defence Staff General Anil Chauhan today bid farewell to military service after receiving a ceremonial Tri-Services Guard of Honour at the National War Memorial in New Delhi. The ceremony marked the culmination of his distinguished tenure as the country's top military officer. After laying wreath at the War Memorial, General Chauhan said it was a matter of great honour for him to superannuate with a Tri-Services Guard of Honour. Marking his transition to civilian life after over 4 decades of service, General Chauhan described his tenure satisfying and excellent.
7: It's a matter of great honor for me to superannuate with the Tri-Services Guard of Honor. I thank the three services and headquarter IDS for it. With the conclusion of the Guard of Honor, I bid farewell to my colleagues in uniform, comrades in arms forever. I laid the wreath at the War Memorial for the last time in uniform, as a humble tribute to those who laid down their lives in the line of duty. This is symbolic of my transiting from uniform to a civilian life. I had a very satisfying and an excellent tenure.
6: At least 7 people have been killed in separate incidents of thunderstorms, rain and lightning strikes across Bihar. According to reports from our correspondents, 3 fatalities were reported in Gaya, while Aurangabad recorded 2 deaths each. Additionally, 1 death each has been reported from Saran and Khagaria districts. Expressing deep grief over the tragic incidents, Chief Minister Samrat Chaudhary has announced an ex gratia grant of 4 lakh rupees each for the next of kin of the deceased. The government has asked public sector oil marketing companies to set up liquefied petroleum gas LPG reserves for at least 30 days as West Asia conflict persists, disrupting global energy supplies. Joint Secretary at the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, stated this while talking to the reporters yesterday during the inter-ministerial press briefing on the West Asia conflict. Outlining the precautionary measures to safeguard against supply shocks, Ms. Sharma said India was also working to increase crude oil storage capacity. Minority Affairs Minister Kiran Rijiju today informed

आज के इस प्रसारण में मैं मेनका देव आप सब सैनिक भाइयों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। गीत संगीत के इस कार्यक्रम का आगाज करने से पहले आइए एक नजर डाल देते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कुछ क्षणों में आप सुन पाएंगे आज का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम आज का गीत प्रसारित किया जाएगा 12:30 पर और कार्यक्रम स्वर संगम का समय होगा 12:38 पर।

समाचार प्रसारित किया जाएगा 1:05 पर। कार्यक्रम गुंजन का समय होगा 1:10 पर। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत का वक्त होगा 1:40 पर। समाचार प्रसारित किया जाएगा 2:00 और आज का अंतिम कार्यक्रम नजराना लेकर हाजिर होंगे 2:30 पर। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा।

फौजी भाइयों, आइए अब आरंभ करते हैं आज का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पेश है पहला गीत फिल्म पद्मावत से, आवाज है नीति मोहन के। इस गीत के गीतकार है सिद्धार्थ गरिमा और संगीतकार है संजय लीला बंसाली।

फौजी भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पेश है अगला गीत, श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से। इस गीत के सब रचनाकार है इरशाद कामिल और संगीत बोध किया है विशाल शेखर ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम में पेश है अंतिम गीत फिल्म मिस्टर आशिक से। आवाज है कुमार शानू के। इस गीत के गीतकार इंदिवर और संगीतकार है जतिन ललित।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी के प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्स और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्स पर। फौजी भाइयों, अब पेश है हमारा दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको आज फिल्म गजगामिनी का गीत सुनवाने जा रहे हैं। आवाज है कविता कृष्णमूर्ति के। इस गीत के गीतकार है माया गोमित और संगीतकार है भूपेन हजारिका का।

फौजी भाइयों, हमारा अगला कार्यक्रम है स्वर संगम। पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डाल देते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हमेशा की तरह कार्यक्रम का आगाज होगा 12:10 पर। पेश किया जाएगा पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत 12:12 पर। कार्यक्रम आज का गीत प्रसारित किया जाएगा 12:30 पर और कार्यक्रम सबरंग का समय होगा 12:38 पर। समाचार प्रसारित किया जाएगा 1:05 पर। कार्यक्रम गीतिका का समय होगा 1:10 पर। कार्यक्रम शीर्षक संगीत का वक्त होगा 1:40 पर। समाचार प्रसारित किया जाएगा 2:00 और कल का अंतिम कार्यक्रम गीत अपना धुन पराई लेकर हाजिर होंगे 2:30 पर। तो ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की अग्रिम जानकारी। फौजी भाइयों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पेश है कार्यक्रम स्वर संगम। कार्यक्रम में पेश है पहला गीत फिल्म ओम जय जगदीश से। आवाज है सोनू निगम, अलका याग्निक और उदित नारायण के।

0: पेश है अगला गीत महालक्ष्मी अय्यर हार्डकोर और जस्सी की आवाज में फिल्म पटियाला हाउस से।
1: This is

0: कार्यक्रम में पेश है अगला गीत मुकेश किशोर कुमार महमूद की आवाज में फिल्म हमजोली से।
1: हरिओम हरिओम हरिओम।

0: तुम अभी तक हो नीचे, सुबह सवेरे जाग के पड़ गए मेरे पीछे। माफ करो, इंसाफ करो, मुश्किल बड़ी आ पड़ी। अरे ना मैं राजा ना वो रानी, वो मेरे पीछे पड़ी। यू
1: आई डोंट नो,
2: यू मैं क्या बोलूं जी,
0: यू टेल मी
1: आई डोंट नो,
0: यू टेल मी
2: मैं क्या बोलूं जी।
0: ओ बाप,
1: दादाजी
0: मेरी बात सुनो बेटे,
2: ओ बाप मेरी बात सुनो, दादाजी
0: मेरी बात तो सुनो,
2: बेटे मेरी बात तो सुनो, बेटे मेरी बात तो सुनो,
0: दादाजी
1: इस तरह भांडों की तरह नाच कर और गवैयों की तरह गा कर ये फैसला नहीं हो सकता। ये फैसला कल अदालत में होगा।
3: खिलौना फिल्म से पेश है अगला गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में।
4: रोज रोज रोजी

0: 3, 4.
1: क्या है चित चोर?
0: 1, 2, 3, 4.
1: क्या है चित चोर?
0: You sing like Kishore, but शादी का date.
1: Oh yes, September 8.
0: Oh, very late.
1: Darling, wait.

0: सच है बिल्कुल।
1: तू है बुलबुल।
0: सच है बिल्कुल। You are wonderful।
1: लग जा गले ए, लग जा गले, दुनिया जले। छम छम छम छम छम छम छम। ए गर्ल हम तुम पे दिल निसार करता है, रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है, रोज रोज।

फौजी भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुंजन। कार्यक्रम में पेश है अंतिम गीत लता मंगेशकर और भूपेंद्र की आवाज में फिल्म किनारा से।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। फौजी भाइयों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पेश है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको आज कुछ असमिया गीत सुनवाने जा रहे हैं। पेश है पहला असमिया गीत एल्बम जेटू का पातो डोरे से। आवाज है जुबिन गर्ग के।

0: and the Midday News.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमा के राष्ट्रपति ओमिन आउल लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
2: As far as Operation Sindoor is concerned,
3: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
4: मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी, मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
1: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री दिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमा के राष्ट्रपति ओमिन आउल लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमा के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
5: म्यांमा के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध

0: नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
1: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मिले, स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वैलोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि उसके साझेदार टीसीएस की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की शुरुआत देरी से हुई। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बौद्धिक खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के

0: लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक कोई स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
1: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ यह सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिंट नाउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज, दोपहर बाद बेंगलुरु में नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: समाचार के बाद एक बार फिर आप सब सैनिक भाइयों का हार्दिक स्वागत है। ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्स और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्स पर। फौजी भाइयों, अब पेश है आज का अंतिम कार्यक्रम नजराना। कार्यक्रम में पेश है पहला नगमा आशिकी फिल्म से कुमार शानू और अनुराधा पोडवाल की आवाज में।

0: ये गुलशन फूल कलियां बहार वादियां, ये मौसम खेत हरियाली पहाड़ बर्फ, ये कायनात कुछ भी नहीं,
1: कुछ भी नहीं,
0: कुछ भी नहीं। गरन में वो नहीं,
1: वो है कौन?
2: कप्तान साहब, उस लड़की का कोई नाम तो होगा।
0: नाम?

इस गीत के साथ ही नजराना कार्यक्रम यही समाप्त होता है। साथ ही साथ समाप्त होता है हमारा आज का प्रसारण। कल फिर आपसे मुलाकात होगी दिन के 12:10 पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।

0: आकाशवाणी आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। आपके साथ है आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अच्छे स्वस्थ होंगे, क्योंकि रेडियो डॉक्टर आपकी ख्याल रखता है, आपके लिए रोज आता है नए नए कार्यक्रम लेकर स्वास्थ्य की नई जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। और ऐसा ही एक कार्यक्रम आज आपके समक्ष फिर। कार्यक्रम का समय वही है 3 से 4 और चैनल भी वही, आपका प्यारा एफएम रेनबो 102.6। साथ ही साथ आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एआईआर को। तो सुनते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि कार्यक्रम है रेडियो डॉक्टर। आज का हमारा विषय बहुत खास, क्योंकि आज है वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे यानी MS डे। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है, कई हमारे श्रोता नहीं जानते होंगे। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, लेकिन इसके बारे में जानकारी होना और समाज में इसके बारे में जानना, क्योंकि अगर कोई इससे पीड़ित है तो उससे कैसे हम डील कर सकते हैं, उससे कैसे हमें बिहेव करना चाहिए, उसको सोशली कैसे इंक्लूड करना चाहिए, यह भी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ उसको कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, ट्रीटमेंट जो कि हमारे डॉक्टर्स हमें बताते हैं वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है आप सबकी भागीदारी। अगर आप इस कार्यक्रम में कुछ पूछना चाहते हैं, इस विषय पर कुछ जानकारी चाहते हैं, तो बिल्कुल नहीं झिझकना है, जुड़ना है रेडियो डॉक्टर के साथ। और आज का जो ये विषय है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ दो रेडियो डॉक्टर्स हैं। मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास धिकव, आप हैं क्लिनिकल न्यूरो साइंटिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड दूसरे हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर आशु गुप्ता। पहले डॉक्टर विकास धिकव, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में।
2: नमस्कार शालिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपने इस टॉपिक को चूज किया है, शुक्रिया। और मुझे पूरा यकीन है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से काफी अवेयरनेस जनरेट होगी इस दुर्लभ बीमारी के बारे में।
1: जी बिल्कुल। और हमारे साथ दूसरे हमारे रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर आशु गुप्ता, आप हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, सफदरजंग हॉस्पिटल, नई दिल्ली। डॉक्टर आशु, बहुत बहुत स्वागत आपका।
3: नमस्कार मैम।
1: और डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत स्वागत है और हमारे श्रोता भी स्वागत करेंगे जब हमसे प्रश्न करेंगे। और प्रश्न हम चाहते हैं आप MS से संबंधित करें। और हमारे साथ दोनों जो एक्सपर्ट हैं वो पूरी तन्मयता के साथ, पूरे विश्वास के साथ आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। और साथ ही कुछ प्रश्न मेरे भी होंगे, वो मैं जरूर पूछना चाहूंगी। सबसे पहला प्रश्न मैं ही ले लेती हूं, मुझे मौका मिल गया। डॉक्टर साहब, ये बताइए, पहले हम समझ लेते हैं कि MS क्या है, फिर हमारे श्रोता और हमारे से प्रश्न करेंगे।
2: जी देखिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक किस्म की दुर्लभ बीमारी है। और दुर्लभ हम बोले तो 20 से 40 लोग, लगभग 1 लाख पॉपुलेशन में से इससे अफेक्टेड होते हैं। तो ये एक क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। क्रॉनिक मतलब धीरे धीरे चलती है, कभी कभी सडन इसके एपिसोड्स भी होते हैं। ऑटो इम्यून, जैसे आपने बोला, ऑटो इम्यून का मतलब है कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, नॉर्मली कोई बैक्टीरिया वायरस बॉडी के अंदर जब एंटर करता है तो उसके ऊपर हमारे एंटीबॉडीज अटैक करते हैं। लेकिन इस बीमारी में हमारे जो टिश्यूज हैं, जो हमारी बॉडी के नॉर्मल अंग हैं, उनके ऊपर ही हमारी जो एंटीबॉडीज हैं वो अटैक करना शुरू कर देती हैं। तो ये एक किस्म से हमारी जो नर्वस सिस्टम है, यानी कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, वहां पे एंटीबॉडीज का अटैक होता है। तो उससे क्या है कि जो हमारा माइलिन है, माइलिन यानी कि जो जैसे बिजली के तार होते हैं, तो तार के ऊपर एक लेयर होती है, तो वो जो लेयर इंसुलेशन है तो वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। तो उससे क्या है कि ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड बोले तो मतलब रीढ़ की हड्डी के बीच में सुषुम्ना नाड़ी जो होती है, तो छोटे छोटे शॉर्ट सर्किट होने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही शॉर्ट सर्किट होते हैं तो फिर सिम्टम्स आते हैं। तो एक किस्म से हम कहें कि महिलाओं में ज्यादा ये बीमारी पाई जाती है। एक इसकी एक खास बात है, विचित्र बात है कि अगर पूरी धरती को देखें तो भूमध्य रेखा है, धरती के बीचों बीच गुजरती है। तो जितना भूमध्य रेखा से दूर जाते जाते हैं तो सूरज जो है वो कम हो जाता है, उसकी रोशनी कम हो जाती है। तो वहां इसका खतरा ज्यादा होता है। और हम जो है भूमध्य रेखा के पास हैं तो हमारा खतरा इतना नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जो बीमारी के मरीज हैं उनकी संख्या धीरे धीरे भारत में भी बढ़ रही है।
1: जी, तो जैसा आपने समझाया बहुत ध्यान से मैं इस बात को समझ रही थी कि दूर होते जाना मतलब सनलाइट से कुछ संबंध है
2: जी,
1: और सनलाइट को हम कहते हैं तो विटामिन डी से कुछ संबंध
2: जी,
1: है
2: जी, जी, जी।
1: तो ऐसा है क्या?
2: बिल्कुल, इसका एक बड़ा इम्पोर्टेंट संबंध है। और तभी देखिए जिन लोगों में विटामिन डी की कमी है
1: अच्छा,
2: तो उनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस का जो जोखिम है वो ज्यादा होता है।
1: अच्छा।
2: पहले ये जो शब्द है मल्टीपल, इसको समझ लेते हैं। मल्टीपल का मतलब होता है मैनी, तो इसमें बार बार अटैक्स आते हैं बीमारी के, इसलिए इसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं। स्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग, मतलब देखे तो नर्व जो है वो सॉफ्ट होती है और इसमें हार्ड हो जाती है क्योंकि जख्म हो जाते हैं नसों के ऊपर, और जब नसों के ऊपर जख्म हो गए तो जो उनका कम्युनिकेशन है, जो उनका ट्रांसमिशन है, न्यूरल ट्रांसमिशन है, वो कमजोर हो जाता है। और जब न्यूरल ट्रांसमिशन कमजोर हो गया तो जैसा हमने डिस्कस किया कि शॉर्ट सर्किट होंगे तो सिम्टम्स आएंगे, और सिम्टम्स आएंगे तो देखिए फिर ये एक लंबे तौर पे चलने वाली बीमारी बन जाती है। तो ये एक किस्म का क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज है
1: जी। तो बहुत सारी चीजें इसके बारे में जानना अभी जरूरी है, और कार्यक्रम का समय अभी है तो हम बहुत कुछ जानेंगे। जैसा आपने बताया कि लक्षण कैसे होते हैं, मल्टीपल टाइम्स अटैक आ सकता है, वो क्यों, कारण क्या बनता है, लेकिन पहले मैं डॉक्टर आशु से जानना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपी, हम सोचते हैं आजकल जब हम बात करते हैं तो रिहैबिलिटेशन के लिए फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी है, ये अब हम मान चुके हैं, पहले ये चीजें नहीं लोग अवेयर थे, पर अब ये लगभग सब जान चुके हैं। और हम कार्यक्रमों के माध्यम से बार बार इसके अवेयरनेस करते हैं कि अगर आप सर्जरी कराते हैं या कुछ भी कराते हैं तो उसके लिए फिजियोथेरेपी इज रिक्वायर्ड। तो किस तरह से एमएस और फिजियोथेरेपी जुड़ती है?
3: मैम, जब हम लोगों के पास केस रेफर होता है आफ्टर न्यूरोलॉजिस्ट, सो उसमें किस केस पे, किस स्टेज पे वो केस रेफर हो रहा है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना
1: जी।
3: तो सपोज अगर वो एक्यूट में आता है और उसका किस टाइप का प्रेजेंटेशन है, तो फिजियोथेरेपी का जो रोल है वो मेनली सिम्टोमेटिक हो जाता है कि पेशेंट को किस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, वो किस स्टेज में हमारे पास आया है। तो फिजियोथेरेपी का रोल एक्यूट स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एमएस के अंदर जो सबसे पहले देखा गया है, सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम जो एक आता है वो है फैटीग का।
1: अच्छा।
3: क्योंकि पेशेंट को बहुत जल्दी मसल फैटीग होने लगता है, तो मसल फैटीग होने के लिए उसका एक्सरसाइज प्रोग्राम डिजाइन करना, उसकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि हमें उसको मेंटेन भी करना है, हमें उसको इंक्रीज भी करना है, उसकी पावर को, उसकी जो मसल टोन है उसको मेंटेन करना है ताकि पेशेंट थके। अगर पेशेंट फैटीग में ज़्यादा जाता है तो उसका जो बीमारी का प्रभाव है वो बढ़ सकता है। प्लस इसके अंदर हम आउटडोर एक्टिविटीज़ थोड़ा सा हम लोग चाहते हैं कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि विटामिन डी का इसमें बहुत रोल है, तो हम ये प्रेफर करते हैं कि पेशेंट का एक वॉकिंग का प्रोग्राम डिसाइड हो। पेशेंट सुबह के टाइम जब सूरज बाहर निकला हुआ है, सुबह 7 से 11 के बीच में बाहर जाएं, विटामिन डी का अपना लेवल को चेक करें। उसके अलावा जैसे उसमें हमारा एक जो मेन रोल आता है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ब्रीदिंग का भी मसल, जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, वो भी इन्वॉल्व होने की टेंडेंसी रहती है। तो किस स्टेज पे हमारे पास पेशेंट आ रहा है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, लेटर स्टेजेस में हम उसमें चलने फिरने में दिक्कत आती है, बैलेंस की दिक्कत आती है, तो हर स्टेज बाय स्टेज हम लोगों का रोल उसके अंदर आता है।
1: फिजियोथेरेपी हर जगह उनकी मदद के
3: लिए, उसमें हम लोग। एंड एक और जरूरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि हमारा रोल एज ए साइकोलॉजिस्ट भी, एज ए, बिकॉज वी स्पेंड मोर टाइम विद देम, तो कई बार हम लोग वो ऐसी चीजें भी उनसे शेयर करते हैं जाकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है। एंड उनकी टीम के, उनकी फैमिली के साथ बात करनी है, फैमिली को शेयर करना है कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट, देयर इज अ लाइफ बियॉन्ड दिस बेसिकली।
1: ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने डॉक्टर साहब उठाई है, और मैं चाहूंगी कि हम विस्तार से इसके बारे में बात करें, लेकिन इससे पहले हमारे कॉलर जो जुड़े हैं उनसे बात कर लेते हैं। हेलो
4: जी, नमस्कार, मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ।
1: जी जी, बताएं, स्वागत है, नमस्कार।
4: मेरा जी जी जी, आपको, डॉक्टर साहब को नमस्कार करता हूँ। मेरा एक ये क्वेश्चन पूछना है कि जिसको ये बीमारी लग जाए तो क्या उसका कोई परमानेंट इलाज है या उसका परमानेंट इलाज नहीं है, और ये बीमारी जो है किस उम्र से शुरू होती है, क्या इसकी उम्र का भी कोई तकाजा है कि बचपन से होती है या बुढ़ापे में जाके होती है?
1: ठीक है।
4: तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये बीमारी एक घर में किसी को लग जाए तो क्या ये किसी दूसरे मेहमान, दूसरे परिवार के किसी भी व्यक्ति को लग सकती है या नहीं लग सकती है, बस इसके मेरे क्वेश्चन।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद, ये सारे प्रश्न हमें डॉक्टर साहब बता रहे हैं। डॉक्टर विकास जी
2: जी जी, देखिए अग्रवाल जी, बीमारी जो है इसका नेचर ऐसा है कि ये शुरू में इन्फ्लेमेशन से शुरू होती है, उसके बाद डीमायलिनेशन तक चलती है, यानी कि जो नसों का कवरिंग है वो धीरे धीरे एक किस्म से वो गल जाता है और वो कवर जो है वो उतर जाता है, तो नर्व जो है वो उनमें आपस में शॉर्ट सर्किट होता है और सिम्टम्स आते हैं। तो ये बीमारी हम ये नहीं कहेंगे लाइलाज है, इसका अच्छा इलाज मौजूद है, बहुत अच्छा इलाज मौजूद है, लेकिन इसको क्योर नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट मेनली सिम्टोमेटिक है, तो मैनेजमेंट फोकस्ड है। और ये 20 से दूसरा सवाल आपका 20 से 40 साल की उम्र में होती है, लेकिन कभी कभी 16 साल के मरीज भी हम देखते हैं और कभी कभी 60 साल के भी देखते हैं।
1: क्या बाय बर्थ कोई केस नहीं होते?
2: हाँ, ये इनका तीसरा सवाल था कि ये हेरिडिटरी नहीं है, अनुवांशिक नहीं है, लेकिन हाँ जेनेटिक कंपोनेंट है। तो अगर देखें कहें कि पापा में है तो बेटे में जोखिम ज्यादा होगा, तो चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये प्राइमरीली एक ऐसी बीमारी है कि अगर मान लिया फादर में है तो डॉटर में होगी ही होगी, ऐसा नहीं है।
1: जी, एक और प्रश्न इन्होंने शायद कुछ ऐसा मुझे जो समझ में आया कि एक से दूसरे में फैल सकती है क्या, तो कंटेजियस तो नहीं है?
2: बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी फॉलोड बाय डीमायलिनेशन ऐसी किस्म की बीमारी है, तो ये एक से दूसरे में तो कभी भी नहीं फैलेगी। एक जब हम किसी मरीज की देखभाल करते हैं तो देखिए हमारा जो केयर गिविंग सपोर्ट है उससे प्यार बढ़ता है, बीमारी नहीं बढ़ती है, बीमारी घटती है।
1: और एक और चीज से प्यार बढ़ता है, गाने सुनने से।
2: जी जी,
1: क्योंकि अच्छे अच्छे जब हम गाने सुनते हैं तो हमें गानों से प्यार होता है, हमें अपने चैनल से प्यार होता है, रेडियो डॉक्टर से भी प्यार होता है।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो एक प्यारा सा गीत सुनते हैं, डॉक्टर विकास की पसंद का ये गीत है और मुझे भी बेहद पसंद है, तो आइए सुन लेते हैं ये गीत।

0: ये प्यारी सी मखमली आवाज थी यसुदास की, और सच में सही कहा गया है कि जीवन उसका है जो दूसरों को जीवन देता है। और ऐसे ही दो जीवन देने वाले आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे प्यारे डॉक्टर्स जो रेडियो डॉक्टर में आते हैं और हमें कृतज्ञ करते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, एक हमारे श्रोता वेट भी कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, ये गाना खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन गाना भी आपको खूबसूरत लगा होगा जरूर, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। जी आप आए लाइन पर, अपना प्रश्न पूछें। हेलो
1: हेलो
0: जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं?
1: जी मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ, करमपुरा दिल्ली से ही।
0: जी जी राजेंद्र जी,
1: मेरी उम्र 48 वर्ष है और वेट मेरा 70 से 80 kg और 6 फीट मेरी हाइट है। तो पहले तो रेडियो डॉक्टर की भी डॉक्टर शालिनी मैम को, शालिनी का सही नमस्कार।
0: जी नमस्कार।
1: और दोनों डॉक्टर साहिबान को भी तहे दिल से नमस्कार और आभार।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार
1: जी। मेरा पहला सवाल, तीन चार सवाल है मेरे। मेरा पहला सवाल ये है कि जो MS की प्रॉब्लम है, डिजीज जो है ये, इसकी अगर मैंने सुना है कि जैसे हम घरेलू तौर पर जो कुछ फल फ्रूट होते हैं, सब्जियां होती हैं या कुछ अनाज होते हैं, जिससे दिमाग तेज होता है, जैसे नीता फली सब्जी खाओ या फिर शिरोधारा या ये शीर्षासन करो, तो मैं जानना चाहता था ऐसे कुछ डाइट या एक्सरसाइज, इससे इसकी रिकवरी हो सकती है। पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे बचपन में मैं होता ये था 1991 तक, मैं कोई भी मैटर उठाऊं एक बार, अगर उसको पढ़ लो एक बार या देख लो सुन लो, तो मुझे उसको दोबारा इसको जो है रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पर आज मेरे को 3-4-5 जो है वो मतलब उसको दोहराना पड़ता, तब मेरे दिमाग में बात घुसती है।
0: मेमोरी लॉस है ना डॉक्टर साहब?
1: जी हाँ जी। तो क्या ये भी
0: उम्र के साथ,
1: हाँ जी, क्या ये भी MS रिलेटेड है? और तीसरा सवाल मेरा ये है कि जैसा आपने कहा कि आपको धूप में बैठना चाहिए या विटामिन डी लेना चाहिए, तो मैम इन दिनों होता ही है कि जैसे ये फ्रिज होता है ना, तो फ्रिज कूलिंग मांगता है, उसी तरीके से मेरा ब्रेन भी कूलिंग मांगता है। जहाँ हीट ह्यूमिडिटी होती है, ये फूड पॉल्यूशन डस्ट पॉल्यूशन होता है, तो मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। तो मुझे ठंडी या तो रेल करके उसकी मसाज करनी पड़ रही है, या फिर मुझे जो है ठंडे पानी से अपने सिक्के सिखाई जो है सिखाई करनी पड़े, तब मुझे मेरा दिमाग काम करता है। और मेरे को इन दिनों स्लीप एपनिया, स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है।
0: राजेंद्र जी बहुत सारे प्रश्न आपके हो गए हैं, हमें और भी श्रोताओं को समय देना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। तो आपके ये तीन प्रश्न डॉक्टर साहब ने नोट किए हैं और वो बारी बारी से बता रहे हैं। सब्जियां फल, वैसे हम बात करने वाले थे डाइट का रोल क्या है इसमें, तो बता दें तो यहीं पे हमारे श्रोता सुनेंगे।
3: जी जी, देखिए बैलेंस डाइट का रोल तो शालिनी जी हमेशा से है
0: जी, बिल्कुल।
3: लेकिन इनका पर्टिकुलर सवाल है कि कोई ऐसा फूड या ऐसा कोई फल जो कि ब्रेन के लिए न्यूट्रिएंट का काम करता है मेमोरी के हिसाब से, तो ऐसे काफी सारे हैं, जैसे अनार का जूस है या जैसे कोकोनट है, तो ये दिमाग के लिए बड़े अच्छे होते हैं। तो इनके पहले सवाल का जवाब तो ये है।
0: अच्छा।
3: दूसरा, इन्होंने कहा कि मेरी मेमोरी धीरे धीरे फेड हो रही है, तो अगर तो देखिए ये खुद अगर MS के पेशेंट हैं तो ये हमें नहीं पता, इनकी बात से थोड़ा सा ऐसा लगा, लेकिन अगर नहीं है तो
0: स्लीप एपनिया की कुछ
3: बता रहे थे वो लास्ट में बोल रहे थे। तो अगर मान लिया हम किसी भी MS के पेशेंट को देखें, ये 20 से 40 के सालों में शुरू होता है, मान लिया 30-35 पे शुरू हुआ, तो ये धीरे धीरे चलता है। और MS का जो मरीज है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, वो 70-75-80 तक आराम से जीवन बिता सकता है। तो इस उम्र में 60 के बाद में इनको डिमेंशिया होने की संभावना भी रहती है। तीसरा, इन्होंने कहा कि मैं कभी कभी, मेरा जो दिमाग है वो मांगता है कि इसको कूल करना है।

0: ये प्री एमसीआई की स्टेज तो नहीं है, प्री एमसीआई का मतलब है माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की स्टेज तो नहीं, उसमें भी ब्रेन फॉग होता है, तो पहले अपनी जांच कराएं, उसके बाद में मेरे ख्याल से कोई ना कोई समाधान निकलेगा। और जो स्लीप एपनिया है देखिए, उसके लिए तो पूरा थोरो वर्कअप होता है, तो वो जब जाएंगे तो वो स्लीप मेडिसिन के स्पेशलिस्ट को इनको डॉक्टर रेफर करेंगे।
1: फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई थिंक ही शुड गेट इट हिमसेल्फ डायग्नोस्ड, क्योंकि ये काफी सारे सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं
2: जी, बहुत सारी चीजें बता रहे हैं।
1: तो अगर ये चीज, अगर ये एस्टेब्लिश्ड केस नहीं है एमएस का, देन ही शुड नॉट वरी, बिकॉज बहुत सारे सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं और उसमें कई बार प्रॉब्लम बहुत कम होती है, और ये स्लीप एपनिया है और ये सब चीजें आजकल वैसे भी थोड़ी कॉमन चल रही हैं, तो दैट वे ही शुड नॉट वरी, फर्स्ट ही शुड गेट हिमसेल्फ टेस्टेड, उसके बाद अगर इनको लगता है कि हाँ मुझे न्यूरोलॉजिस्ट और बाकी टेस्ट जो है एमआरआई या जो भी उनके टेस्ट हैं उसके बाद अगर आ रहा है तो उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट लेंगे तो बेटर रहेगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और डॉक्टर साहब देखिए, मैसेजेस का सिलसिला भी शुरू हो गया है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने हमें मैसेज किया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा जो पहला मैसेज हम तक पहुंचा है वो लंदन से आया है, और लिखने वाले हैं हमारे श्रोता जो हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से सुन रहे हैं, इम्यूनोलॉजिस्ट है ये इंपीरियल कॉलेज लंदन में, और सभी डॉक्टर्स को धन्यवाद दे रहे हैं। साथ ही लिख रहे हैं, मेरा नाम विश्वास है, मैं लंदन में रहता हूं, एक प्रश्न है कि क्या चाइल्डहुड हिस्ट्री ऑफ जीबीएस कैन लीड टू एमएस इन फ्यूचर, और मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि नेचर ऑफ बोथ डिजीजेस आर सिमिलर एंड जीबीएस हैज बीन इन राइज इन इंडियन चिल्ड्रेन। तो डॉक्टर विकास क्या कहेंगे?
0: बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है इनका। डॉक्टर विश्वास नमस्कार, और देखिए आप भूमध्य रेखा के दूसरी साइड से उत्तरी गोलार्ध से हमें सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपका जो सवाल है देखिए रिसर्च लेवल का सवाल है, क्योंकि दोनों जो बीमारियां हैं उनकी नेचर सिमिलर हैं और दोनों में ही एक किस्म से डिमाइलिनेशन होता है वेरिएबल डिग्री का, लेकिन दोनों का कोअकरेंस भी हम कहें तो हो सकता है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि पहले अगर गुलेनबेरी सिंड्रोम हुआ है तो उसके बाद में मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिसर्च का विषय है। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि भारतीय बच्चों में गुलेनबेरी सिंड्रोम देखा गया, तो बच्चों में क्या कुछ समय पहले बड़ों में भी कुछ केसेस रिपोर्ट किए गए थे, तो वो कुछ समय पहले की बात है, लेकिन जहां तक इनके सवाल का जवाब है तो हम तो कहेंगे अभी ये रिसर्च का सब्जेक्ट है और एक थोरो रिसर्च के बाद ही इस सवाल का जवाब दिया
2: जी, और रिसर्च हर फील्ड में हो रही है, एमएस के क्षेत्र में भी हो रही है, तो हम जरूर इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अनीता तेजवानी जी ने हमसे लिखा है कि गुड आफ्टरनून डॉक्टर्स एंड शालिनी जी, एमएस क्यों होता है, पहले हम ये जाने, क्योंकि इनका प्रश्न बहुत बेसिक है और ये हम सब जानना चाहेंगे कि अगर किसी को कोई ऑटो इम्यून डिजीज है तो उसको एमएस होने की क्या संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारी डिजीजेस होती हैं जो ऑटो इम्यून की श्रेणी में आती हैं, तो ये बताएं
0: जी। देखिए पहला सवाल है इनका कि क्यों होता है, तो पहला तो है जैसे फीमेल जेंडर, महिलाओं में 2 से 3 गुना ज्यादा होता है, हम ये नहीं कह रहे महिला होना एक कॉज है, बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन महिलाओं में संभावना ज्यादा है। दूसरी बात, जिन जो धूम्रपान करते हैं उनमें भी संभावना ज्यादा है। एक वायरस है जो कि 95% लोगों में होता है, एप्स्टीन बार वायरस, तो एप्स्टीन बार वायरस का अगर इन्फेक्शन है तो संभावना ज्यादा होती है। एक किस्म का एक हर्पीज वायरस होता है, तो अगर वो हो गया है किसी को, वायरल इन्फेक्शन होते ही रहते हैं तो भी संभावना ज्यादा होती है। लो विटामिन डी अगर किसी का है या उसका सन एक्सपोजर कम है तो संभावना ज्यादा होती है, या फिर अगर मान लिया घर परिवार में किसी को एमएस है तो संभावना ज्यादा होती है। तो ये तो जो कारक है, अगर कोई कहे कि एक सिंगल रीजन आप बताइए कि एमएस क्यों होता है, तो कोई एक सिंगल रीजन नहीं, मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है, इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। तो अब देखिए जो मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स अगर किसी में हो तो संभावना ज्यादा होगी। तो अगर हम दूसरे जो इनके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि बाकी ऑटोइम्यून डिजीज है जैसे टाइप 1 डायबिटीज है, अस्थमा है फॉर एग्जांपल, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो उनके साथ एमएस की एसोसिएशन है, हम ये नहीं कहेंगे कि ये कॉज है, ये वजह नहीं है, लेकिन संभावना तो बढ़ती है।
2: डॉक्टर अशोक ये बताइए, जैसे फिजियोथेरेपी को डॉक्टर विकास ने कहा कि इसको हम मैनेज कर सकते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो इसमें जो फिजियोथेरेपी का बहुत रोल है, जैसा आप पहले भी मुझे बता रहे थे कि किस तरह से आप गाइड करते हैं पेरेंट्स को, केयर गिवर्स को, और इवन जो आते हैं आपके पास, तो वो थोड़ा सा हमें बताएं कैसे किया जाता है।
1: इसमें क्या होता है, बिकॉज हम लोगों की ग्रेजुअल मसल वीकनेस की तरफ चली जाती है, हमारी लोअर लिम्ब्स की जो मसल्स हैं, हिप की मसल्स है, नी की मसल्स है, जिससे पेशेंट्स में इनिशियली टाइटनेस होती है, फिर वो धीरे धीरे अगर उनको ध्यान नहीं रखा गया तो वो कॉन्ट्रैक्चर हो जाते हैं, जिसके कारण उनको चलने फिरने में, बैलेंस में और बाकी चीजों में प्रॉब्लम आने लगती है। तो फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है कि उनको, उनके जो फैमिली वाले हैं, उनके साथ जो केयर गिवर्स हैं, उनको

0: एक होम प्रोग्राम बताया जाए ताकि वो उनको बार बार क्लिनिक पे आने की हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना पड़े। इसको हम बोलते हैं कि मेंटेन द ज्वाइंट रेंज ऑफ मोशन, वो ज्वाइंट की जो एक मोबिलिटी है वो मेंटेन रहे। कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताई जाती हैं, कुछ उनको इसमें पॉस्चर के प्रॉब्लम आने के भी चांसेस रहते हैं, पॉस्चर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, पॉस्चर को कैसे सही मेंटेन करना है। अगर कुछ हमें ऑर्थोटिक डिवाइस चाहिए किसी कॉन्ट्रैक्चर को या डिफॉर्मिटी को चेक करने के लिए, वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर कुछ बैलेंस के इश्यूज आ गए हैं लेटर स्टेजेस में तो उसमें हम लोग कुछ प्रोप्रायोसेप्टिव और बैलेंस एक्सरसाइजेस बताते हैं। उसके साथ साथ हम ये भी गाइड करते हैं कि जो घर का एटमॉस्फेयर हो वो पेशेंट फ्रेंडली हो, क्योंकि इसमें कई बार विजन लॉस के डिप्लोपिया भी हो जाता है और कई बार ब्लर्ड विजन भी रहता है। तो उनका जो वॉशरूम है, उनका जो कमरा है, उसमें सब चीजें ऐसी रहे जहाँ की अगर कोई चांस है फॉल होने का तो उसको हम हटाएं वहां से, या अगर हम और कोई मेथड उसमें यूज कर सकते हैं तो उसके माध्यम से हम उनका जो एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बने। क्योंकि जब इनके एक्यूट सिम्टम्स होते हैं तब कई बारी देखने में और सेंस में और स्किन की भी मतलब इश्यूज आते हैं, तो जो मल्टी उसके हिसाब से उनका जो सिस्टम सारा का सारा सेट हो और उनके हिसाब से उनका एक्सरसाइज प्रोग्राम डिजाइन हो। प्लस आज की डेट में एक्वा थेरेपी का इसके अंदर बहुत अच्छा रोल आ गया है, तो जिसमें कि जाके पेशेंट को थोड़ा मोटिवेशन भी रहता है कि मैं कुछ डिफरेंट कर पा रहा हूँ। बिना थके उस पानी के अंदर हम कुछ सिंपल एक्सरसाइज उनको बताते हैं जिसको कि जैसे अवेलेबिलिटी है उनकी उसके हिसाब से जाके हफ्ते में 2 या 3 दिन। इसके अंदर जो एक मेन इंपॉर्टेंट रोल एक और भी है जो कि मोस्टली एमएस पेशेंट्स के साथ हम लोग प्रोग्राम जब डिजाइन करते हैं तो उसमें हम लोग एरोबिक एक्सरसाइजेस हफ्ते में 2 या 3 दिन एक लिमिटेड टाइम के लिए, हफ्ते में 2 या 3 दिन स्ट्रेंथ एक्सरसाइज टू मेंटेन देयर मसल, प्लस हम लोग हफ्ते में 2 या बाकी बचे हुए दिन में वॉक या फिर हम लोग एक्वा थेरेपी, ताकि पेशेंट्स जो हैं उनकी मसल्स फैटीग में भी ना जाएं और जो उनकी मांसपेशियां हैं उनमें ताकत बनी रहे और उनके अंदर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आए, ताकि जब डिसीज का एक्यूट फेज खत्म हो तब वो एक नॉर्मल लाइफ की तरफ जा सके।
1: जी जी, बहुत विस्तार से आपने बता दिया कि किस तरह से, बहुत सारे श्रोता जानना चाह रहे थे कि क्या लाइफस्टाइल का, एक्सरसाइज का, डाइट की भी हमने बात करी, इसका भी रोल है, योग का भी रोल है क्या इसमें, आप कुछ बता।
0: योगा इज अ नेचुरल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज बेसिकली, तो अगर एंड आई फील एज वी ऑल नो कि योगा तो एक मेंटेन करने के लिए है। अगर हमारे के सब ज्वाइंट रेंज ऑफ मोशन, हमारे को कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, हमारे को कोई और प्रॉब्लम नहीं है, और अगर हम स्टार्टिंग से ही योगा को ऐड कर रहे हैं प्राणायाम से लेके ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से लेके जो नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं, नॉर्मल हमारे पॉस्चर की चीज़ें हैं, तो योगा से उससे बढ़िया तो फिर और कोई चीज़ ही नहीं है। हाँ, बट उसको अगर हम सुपरवाइज इनिशियली उसका भी अगर हम सुपरविजन के अंदर कर लें और टाइम टू टाइम अगर उसको हम अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लें तो उससे हमें उसमें काफ़ी मदद मिलती है।
2: जी, इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स अब जो चल रहे हैं उनमें ये पता लगता है कि अगर एमएस के जो मरीज हैं वो शुरुआत में ही अगर योगा करें, सुपरवाइज करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर शुरुआत से ही योगा करें तो उनको जैसे डिप्रेशन एक इमोशनल सिम्टम, मेंटल सिम्टम है, तो उसकी संभावना कम हो जाती है। फिर इनको बॉडीली पेन होते हैं अलग अलग जगह पे, वो कम हो जाता है, और साथ में इनको जो स्टिफनेस है, मसल स्टिफनेस जो है, मसल स्पाज़म जो है या ब्लैडर स्पाज़म है, वो कम हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी जो इश्यूज़ होते हैं काफ़ी स्पेशली लेट स्टेज में, तो उनके लिए भी योगा, अनुलोम विलोम या प्राणायाम काफ़ी यूजफुल है। तो एक और खास सिम्टम होता है इनमें क्रॉनिक फटीग, ये थके रहते हैं एमएस के मरीज, बहुत ज्यादा थके रहते हैं, तो उस थकावट के लिए भी योगा एक एनर्जी का काम करता है। तो एविडेंस अब आ रहा है धीरे धीरे कि योगा की यूजफुलनेस है, और जैसा इन्होंने कहा कि एक नेचुरल फॉर्म जो कि कल्चरली एक्सेप्टेड है, लो कॉस्ट है और यूनिवर्सली अवेलेबल है। तो अब जैसे फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं वो छोटे गांव में ना हो या छोटे शहर में ना हो, तो वहां पे अगर कोई मरीज होता है तो वो सीख के किसी से योगा करे तो उसको फिजियोथेरेपी जैसा
1: फायदा हो सकता है। जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, आज हम बात कर रहे हैं एमएस पर, आज है वर्ल्ड एमएस डे। हमारे जो रेडियो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर आशु गुप्ता, आप हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में, और हमारे दूसरे रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर विकास धीकव, आप क्लिनिकल न्यूरो साइंटिस्ट हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और डॉक्टर विकास के बारे में एक बात और कहना चाहूंगी कि आप डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च में रिसर्च तो कर ही रहे हैं लेकिन गानों में भी अच्छी रिसर्च है आपके ऊपर, गाने में क्या कहेंगे?
2: मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसको गाने नहीं पसंद हो।
1: नहीं, पसंद तो हमें है लेकिन हमें पता है आप बहुत अच्छा गाते भी हैं, अगर हमारे श्रोता थोड़ा सुन लें वो डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप दो चार लाइनें सुना दीजिए।
2: जी जी जी, तो
1: एक ये प्यारा सा गीत है डॉक्टर साहब, मैंने निकाल रखा है अभी, ए अजनबी दिल से फिल्म का, ये थोड़ा सा सुनाएंगे अगर आपको आता हो तो।
2: जी जी जी।

0: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस पर, क्योंकि आज है वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे, एमएस डे जिसे कहा जाता है। और देखिए डॉक्टर साहब, सिर्फ हम ही तारीफ नहीं कर रहे हैं आपकी, बहुत सारे श्रोता भी हमें तारीफी मैसेज कर चुके हैं कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा आपने गाया है। फरीदाबाद से कपिल ने लिखा है बहुत, और तालियां भी बजाई हैं उन्होंने, इमोशंस भी भेजे हुए हैं कि बहुत अच्छा गाया सर ने, आपकी चॉइस भी काफी अच्छी है, तो थैंक यू कर दीजिए। और बहुत सारे मैसेज हमारे श्रोताओं ने ऐसे भी लिखे हैं जो अपनी समस्याएं हमसे पूछ रहे हैं। तो ये हमें मैसेज करा है मीरा सिंह ने सिलचर आसाम से, और यही नाम लिखा है इन्होंने, शायद मीरा सिंह सिलचर आसाम। इन्होंने लिखा है कि मेरे राइट लेग के अंगूठे के जॉइंट में कभी कभी बिजली जैसे करंट लगता है और फिर जलन भी फील होती है, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। विटामिन डी की कमी है मेरी, एज है 59 प्लस, क्या करूं, योगा भी करती हूं। और एक इन्होंने प्रश्न लिखा है कि मेरे हस्बैंड को हर्पीस शोल्डर्स के नीचे हुआ था पर अब भी वहां इचिंग होती है, तो बहुत ड्राइनेस भी है, उनकी एज 68 है।
1: जी जी जी, देखिए ये हो सकता है मीरा जी काफी चलती हो, कभी कभी चलने की वजह से या जो हम फुटवेयर पहनते हैं उसकी वजह से भी कोई एंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी हल्की सी हो जाती है, तो बिजली का झटका जैसे है वैसे लगता है। और जहां तक बात है इनके हस्बैंड की, तो इन्होंने ऐसा बताया है कि शोल्डर के नीचे इनको हर्पीज हुआ, तो वो जॉस्टर हुआ होगा, तो उसमें ये हल्के हल्के बिजली के झटके ऐसे लगते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि अगर एमएस हो, ये तो एमएस नहीं है ऑब्वियसली, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में एक फिनोमेना होता है, उसको हम लर्माइट फिनोमेना बोलते हैं। लर्माइट में क्या होता है कि जैसे ही आप गर्दन नीचे करते हैं या गर्दन साइड में करते हैं तो बिजली के झटके लगते हैं, और ये मल्टीपल लगते हैं, और ये इसकी पहचान भी है। और आम इंसान एक इसी लक्षण से आसानी से एमएस को पहचान सकता है। बाकी भी और हैं, जैसे अगर किसी को हम एक कहें कि झंझनाहट हो रही है हाथ में या पांव में, झंझनाहट अक्सर हाथ से शुरू होती है, हथेलियों से शुरू होती है, उसके बाद फोर आर्म में जाती है, या फिर अचानक हम देखें कि लेफ्ट साइड में एक किस्म से वीकनेस शुरू हो गई है या पैरालिसिस आ गया है या पैरापरेसिस हो गया है, दोनों टांगे जो है वो उनमें कमजोरी आना शुरू हो गई या बहुत ज्यादा थकान रहती है, तो ये तो हुए इनके फिजिकल सिम्टम्स। तो जहां तक मेंटल सिम्टम्स है, तो उदासी रहना या बहुत एंग्जाइटी होना, और जो कॉग्निटिव सिम्टम्स है, याददाश्त का धीरे धीरे कमजोर होना, चीजें रख के भूल जाना और बाद में स्ट्रगल करना, और जो ऑक्युलर सिम्टम्स है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। अचानक देखिए एक आंख की रोशनी चलेगी या दोनों आंखों की रोशनी चलेगी, तो ये बहुत ज्यादा स्कैरी हो सकता है, या धीरे धीरे रोशनी जा रही है या आंखों के सामने बहुत धुंधलापन नजर आ रहा है, तो एमएस को पहचानना आसान है। लेकिन देखिए इसके बावजूद भी मिस डायग्नोसिस बहुत कॉमन है, डायग्नोसिस लेट होता है, क्योंकि अक्सर हम ये सोचते हैं कि ये जो झंझनाहट है ये किसी और वजह से होगी, ये एमएस की वजह से ना हो। और क्योंकि ये जो बीमारी है ये रेयर है, हिंदुस्तान में लगभग 1.5 से 2 लाख मरीज ही हैं एमएस के, तो ऐसा नहीं है हर एक झंझनाहट एमएस नहीं है और हर एक सुनपना जो है वो एमएस नहीं है। तो आप एक न्यूरोलॉजिस्ट से अपना जो थोरो इवैल्यूएशन वो करवाइए, तभी जो बीमारी है देखिए उसका निदान हो सकता
0: है। जी, आपने बताया बहुत अलग अलग तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं, और फिर ट्रीटमेंट भी सिम्टोमेटिक ही है इसका। लेकिन जैसे आपने बताया कि किसी को ऐसा फील हो रहा है जो नॉर्मल नहीं लग रहा है, झुंझुनाहट है या जितने भी आपने सिम्टम्स बताए, तो एक तो वो पहुंचे, सबसे पहली बात है डॉक्टर से कंसल्ट करे, पर वहां जाकर क्या टेस्ट किए जाते हैं जो ये कंफर्म करते हैं कि हाँ ये एमएस ही है।
1: जी देखिए ऐसा होता है कि अगर तो आप एक एमएस का फॉर्म होता है रिमिटिंग एंड रिलैप्सिंग 85% होता है, तो अगर मान लिया आरआर एमएस है, बार बार अटैक हो रहे हैं, पुरानी हिस्ट्री है, तो वो इटसेल्फ एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है जो कि न्यूरोलॉजिस्ट को तुरंत पता लग जाता है कि झंझनाहट है, वीकनेस है, स्पाजम है या बाउल ब्लैडर की इन्वॉल्वमेंट है, तो ये बिल्कुल क्लियर कट है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए स्पाइनल कॉर्ड का और ब्रेन का, दोनों का एमआरआई ब्रेन किया जाता है, और ये गैडोलिनियम एनहांस होता है, जीडी एनहांस हम इसको बोलते हैं, तो उसमें जो ये पैचेस हैं, जो स्पॉट्स हैं, तो वो दिखते हैं, तो पैचेस और स्पॉट्स जो हैं वो, और इसके साथ में जो सीएसएफ का टेस्ट है जिसमें ओलिगोक्लोनल बैंड होता है, तो वो दिखता है। और इसके अलावा हम सोमेटो सेंसरी पोटेंशियल, इवोक पोटेंशियल, वो एक किस्म से नसों की जांचें होती हैं, तो वो करवानी पड़ती है। तो समरी अगर करें तो नसों की जांचें, कमर की जो रीढ़ की हड्डी है उसका पानी, और एमआरआई ब्रेन, और एमआरआई जो हम बोलें कि आपका स्पाइन है उसका, तो इससे फिर डेफिनेटिवली हम डायग्नोस कर सकते हैं,
0: कंफर्मेशन हो जाता है।
1: जी जी
0: जी देखिए ये हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं रणधीर गुप्ता बबीता रानी गुप्ता ओखला संगम विहार से लिख रहे हैं कि डॉक्टर विकास और डॉक्टर आशु शालिनी मित्तल आपको तीनों को सादर प्रणाम। कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य के प्रति काफी जानकारी हमें मिलती है, तो धन्यवाद रणधीर जी, आप इसी तरह से जुड़े रहिए कार्यक्रम के साथ। और अनूप कुमार लिख रहे हैं झारखंड से कि मुझे रांची में आप रहते हैं, लिख रहे हैं कि बीपी शुगर है मुझे काफी सालों से, 55 इयर्स की एज है शायद इन्होंने लिखा है क्या, सिंस 37 इयर्स मुझे ये बीमारी है और ईयर लीकेज एक साल से हो रहा है, रिंगिंग साउंड फील होती है, वाइब्रेशंस फील होते हैं बैकबोन में, तो क्या ब्रेन इन्फेक्शन है या क्या मैं करूं, प्रिकॉशंस क्या लूं, एक्सरसाइज क्या करूं?
1: जी जी देखिए बीपी शुगर है इनको और लंबे समय से है, तो ये हो सकता है कि अगर इनका, हमें नहीं पता इनका शुगर कंट्रोल में है यानी इनका HbA1c क्या है तो, या ब्लड शुगर रैंडम कितना है, तो ये अपना HbA1c और अपना ब्लड शुगर चेक कराएं, अपना बीपी कंट्रोल में रखें, तो हो सकता है कि ये कोई न्यूरोपैथी के सिम्टम्स आ रहे हैं इनको, डायबिटिक न्यूरोपैथी के, तो उसकी वजह से इनको ये झंझनाहट होती है, तो अपना थोरो चेकअप करवाएं, उसके बाद फिर एक फाइनल इवेल्युएशन होगा जिससे पता चलेगा कि इशू क्या है।
0: जी पारुल जानना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब बड़ौदा से, नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या MND और MS सेम है? MND इन्होंने ये भी शॉर्ट में लिखा है, आप
1: बिल्कुल, मोटर न्यूरॉन डिजीज बिल्कुल अलग है, बोले तो ये दो मरीज होते हैं 1 लाख पे, इतना रेयर है, और MS के 20 से 40 मरीज होते हैं 1 लाख पे, लेकिन अभी अभी थोड़ी देर पहले लंदन से कॉल आया था तो इंग्लैंड में देखिए 150 से 200 मरीज होते हैं पर 100,000, तो वहां पे इसका प्रेवलेंस ज्यादा है, तो MND बिल्कुल अलग है, सिम्टम सिमिलर हो सकते हैं दोनों के, जो क्लिनिकल फीचर्स ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं, लेकिन बीमारियां दोनों अलग है, कोर्स भी दोनों,
0: और पता तब चलता होगा जब पूरा डायग्नोसिस होता होगा, क्लिनिकल डायग्नोसिस,
2: डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज इम्पोर्टेंट, दैट इज
0: राइट।
2: न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम सारी एक जैसी दिखती है लेकिन उनका किस कारण है, ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट है, स्पाइन की है, या उनका क्या प्रोग्रेशन है, कितना लाइफ है, कितना उसके साथ मैनेज कर सकते हैं, कितना अच्छे से हम रह सकते हैं, तो वो फिर सब डायग्नोसिस के बाद ही है,
0: और डायग्नोसिस के बाद ही फिर जैसा आप डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उनको ट्रीटमेंट हम देना शुरू करेंगे, जैसे जैसे उनके सिम्टम्स होंगे वैसे वैसे हम उनको ट्रीटमेंट देंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर आशु हम पहले बात कर रहे थे, आपने बीच में बोला कि बहुत बड़ा रोल होता है फैमिली फ्रेंड्स केयर गिवर्स का, सोशल एक सपोर्ट बहुत जरूरी होता है आदमी के लिए, तो जब इस तरह के केयर गिवर्स आपके साथ आते हैं MS के पेशेंट के साथ, वो कोई एक यंगस्टर भी हो सकता है, फैमिली का ब्रेड अर्नर भी हो सकता है, किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं आप?
2: मैम एक्चुअली MS का या किसी भी ऐसी इस टाइप की लंबी बीमारी जिसे या हम कहें क्रॉनिक बीमारी न्यूरोलॉजिकल स्पेशली, तो उसमें इट हैज टू बी ए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, तो अगर एक सिर्फ एक डॉक्टर के पास चले जाएं या सिर्फ एक फिजियोथेरेपी के पास चले जाएं या हम सोचें कि हमने ट्रीटमेंट चल रहा है हम उससे ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी, इसमें हमारा इमोशनल, इसमें हमारा साइकोलॉजिकल कि हमारा क्या होगा, हमारी फैमिली का क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं आजकल, हम गूगल पे काफ़ी कुछ पढ़ लेते हैं, उसमें हम लोग काफ़ी कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि बिना ये जाने कि हम किस स्टेज पे हैं या हमारी एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, तो उसमें फैमिली का और केयर गिवर्स का रोल, तो उसमें एक सोशल वर्कर का रोल बहुत आ जाता है, जो क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, सबसे पहले उनको ये बताना कि लाइफ इस बीमारी के आगे भी लाइफ है, फिर उस टाइप की कुछ कम्युनिटी बनी हुई है डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जहाँ पे स्पेशली MS के पेशेंट्स को जाके आप मिल सकते हो, आप जो 15-20 साल से ये जो एक्यूट केस है, अगर वो वहाँ जाके अपने जो 15-20 साल से इस उसके बीमारी से जूझ रहे हैं कि वो कितना अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं उनके, और उनको क्या क्या दिक्कतें आई और उनके एक्सपीरियंस से हम क्या सीख सकते हैं कि क्या हम प्रिवेंटिव हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हम लोग कहते हैं कि अब ये हो गया अब तो ऐसे ही रहना पड़ेगा, वो एक बहुत गलत अप्रोच है, तो उसके बाद हम लोग अपने को कैसे लाइफस्टाइल को हम अपने को बेटर कर सकते हैं, और कम्युनिटी का रोल है कि कम्युनिटी के लिए हम, ताकि उस टाइप से एक्सेप्टेंस हो, बिकॉज अगर हम अपना इनिशियल शुरू से ध्यान रखते हैं तो आई थिंक हम बहुत लास्ट तक उसमें अपना एक बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, तो उसमें पूरी फैमिली का, फ्रेंड्स का, सोशल वर्कर्स का, साइकोलॉजिस्ट का, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, इवन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, क्योंकि कई बार किसी लेवल पे कुछ हमें असिस्टेड डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, या कई बार हमें एम्बुलेशन में दिक्कत पड़ रही है, तो काफ़ी सारी चीज़ें अगर ये हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रहेगी तो हम एक पेशेंट को जो कि MS की प्रॉब्लम से जूझ रहा है उसको हम काफ़ी हद तक हेल्प कर सकते हैं।
0: जी जी ये जो अभी पारुल ने बड़ौदा से पूछा था डॉक्टर साहब MND के बारे में, इन्होंने आगे ऐड किया है कि मेरी सिस्टर को MND है, तो इसीलिए ये जानना चाहती थी, क्यूरियस थी ये जानने के लिए कि क्या वो ठीक हो सकती हैं। और साथ ही साथ इन्होंने एक रिक्वेस्ट भी की है कि मैम क्या आप रेडियो डॉक्टर में MND पर भी एक सेशन रख सकती हैं, क्योंकि जब हम ऐसे देखते हैं अपने किसी क्लोज को तो हमें बहुत दुख भी होता है। आई एम वेरी सैड टू सी माई सिस्टर इन द सच सिचुएशन। तो वो हम समझ सकते हैं आपकी बात पारुल जी, बिल्कुल समझ सकते हैं, और बिल्कुल हम इस पर भी कार्यक्रम जरूर करेंगे। और अभी फिलहाल मैं डॉक्टर से पूछूंगी।
1: देखिए MND जो है एज अपोज टू MS एक गंभीर बीमारी है, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आप एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं अगर आपका डायग्नोसिस टाइम पे हुआ है, आपका ट्रीटमेंट ठीक समय से शुरू हो गया है और आपकी मॉनिटरिंग अच्छी है, आप मोटिवेटेड हैं, आपके इमोशनल डोमेन या कॉग्निटिव डोमेन अच्छे से लुक्ड आफ्टर है और आपकी केयर गिविंग सपोर्ट बहुत अच्छी है, फैमिली सपोर्ट अच्छी है। जो मोटर न्यूरॉन डिजीज है वो बिल्कुल अलग किस्म की बीमारी है, उसमें ब्रेन स्टेम सिम्टम्स बहुत ज्यादा होते हैं, निगलने में दिक्कत होती है, फिर बाद में जो अपर रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट सिग्निफिकेंट होता है और ये बेसिकली मसल्स की एट्रोफी हो जाती है, तो हाथ पांव जो है वो एक किस्म से बहुत ढीले पड़ जाते हैं, तो एग्रेसिव फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है। दवाइयां हैं, सपोर्ट है, लेकिन इसको बहुत इंटेंस मॉनिटरिंग की न्यूरोलॉजिस्ट के थ्रू जरूरत होती है। तो इन्होंने अच्छा सुझाव दिया है कि ये भी एक बीमारी है तो जिसके बारे में जागरूकता

0: बहुत ही कम है एमएस के बारे में, तो फिर भी धीरे धीरे लोगों को पता लग रहा है, तो वो फ्यूचर में किया जा सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम इस पर जरूर कार्यक्रम शीघ्र करेंगे। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पारुल जी। और ये हमें प्रश्न किया है, हमें लिखकर भेजा है हमारे एक श्रोता है प्रेम पाल सिंह, दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर साहब मेरे पिताजी को चेहरे पर हर्पीस हुई थी और काफी दिनों तक इलाज करना पड़ा, कि ये जानना चाहते हैं क्या एमएस की वजह से हर्पीस भी होती है, क्या दोनों का आपस में संबंध है?
0: नहीं, देखिए 55 साल के बाद में वेरिसेला इन्फेक्शन होते रहते हैं और उसकी वजह से फेस पे या अपर चेस्ट पे या ट्रंक पे दाने हो जाते हैं, काफी इचिंग होती है, तो वो एक कॉमन बीमारी है, समय के साथ ठीक हो जाती है। लेकिन 55 साल के बाद जो एडल्ट हर्पीज होता है उसको, उसका ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, तो प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ही इसका सोल्यूशन है
1: जी। और ये मैसेज लिखने वाली है अंजलि सिंह सिलीगुड़ी से, ये लिख रही है रात को सोने पर मैं झंझनाहट महसूस करती हूँ और नींद भी मुझे इसलिए अच्छी नहीं आती, क्या करूँ, 65 इयर्स एज है। और बहुत अच्छा गाना गाया डॉक्टर साहब आपने ये भी इन्होंने लिखा है साथ में
0: अंजलि जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे लगता है कि यही आपका इलाज है कि सोने से पहले मुझे लगता है आप अच्छा म्यूजिक सुने, और आकाशवाणी पे इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम आते हैं और मुझे लगता है कि अच्छा म्यूजिक चलता रहता है, तो सूदिंग म्यूजिक सुने। और थोड़ा सा जो जैसे फिजिकल मेडिसिन में एक एक्सरसाइज होती है जिसको प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन बोलते हैं पीएमआर, तो कहीं से पीएमआर सीखें, थोड़ा सा मसल्स की टाइटनिंग एंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइज होती है तो वो करें, थोड़ा योगा भी कर सकते हैं, और टहलें, परिवार के आसपास रहें, और आपको मालूम है कभी कभी अकेलेपन से भी ये दिक्कतें होती हैं, तो ये अगर आपका फैमिली सपोर्ट अच्छा है, आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ थोड़ा समय बिताएं, थोड़ा कुछ अखबार या कोई पत्रिका पढ़ें, तो आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, अच्छी नींद आएगी
1: जी। आपने कहा कि रिलैक्स करना जरूरी है, और अभी अंजलि जी भी शायद सुन रही है, कार्यक्रम सुन रही है ना अंजलि जी, तो आप सुनना चाहेंगे एक प्यारा सा गीत यहाँ पर आपके लिए, हम सबके लिए। एक मुझे याद आ गया डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि गाने भी सुनते रहना चाहिए
0: जी,
1: है ना, तो एक गीत सुन लेते हैं।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं। हैट्स ऑफ टू ब्रिलियंट टीम ऑफ रेडियो डॉक्टर। ऑल डॉक्टर्स डिजर्व बिग थैंक्स फॉर मेकिंग आवर लाइफ सो गुड एंड टेंशन फ्री, लिख रही हैं प्रोमिला बेदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और डॉक्टर विकास, यू हैव अ वंडरफुल वॉइस, लिखकर भेज रही हैं मंजू भाटिया द्वारका से, दिल्ली से। और यशपाल जी हमें लिख रहे हैं थैंक यू सो मच शाली मैम एंड बोथ डॉक्टर्स फॉर वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड फॉर दिस लाइव रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम। आप ये बताएं कि इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन एमएस एंड सिजोफ्रेनिया?
1: हाँ, दोनों अनकनेक्टेड है। सिजोफ्रेनिया एक प्राइमरी साइकेट्रिक डिसऑर्डर है और एमएस एक प्राइमरी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। हाँ, लेकिन एमएस में कभी कभी साइकेट्रिक सिम्टम्स आते हैं
2: लेटर स्टेज।
1: हाँ, ऑब्वियसली एडवांस फेज में आते हैं, लेकिन हाँ बहुत सारे पेशेंट्स को अर्ली फेज में कॉग्निटिव चेंजेस भी आ जाते हैं, तो इट वेरीज
0: जी। और अंजलि जी भी हमें दोबारा से थैंक यू बोल रही हैं। आपने उनको जो गीत सुनाया आपने और फिर बाद में हमने जो गीत सुनाया उन्हें, अभी वो दोनों ही अच्छे लगे। और ये लिख रही हैं कि मैं गाने की बहुत शौकीन हूं, तो चलिए एक बहुत अच्छी बात आपने बोली, ये गाने सुनेंगे और बिल्कुल फ्री, टेंशन फ्री रहेंगे आगे से अंजलि जी, और हमारा कार्यक्रम जरूर सुनती रहेंगे। समय कम है डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि रिसर्च में हैं आप, न्यूरो साइंटिस्ट हैं और हेल्थ रिसर्च में बहुत सारी चीजें आप देखते होंगे, तो इस फील्ड में यानी एमएस के फील्ड में क्या कुछ हम अच्छी खबर सुन सकते हैं कमिंग डेज में?
1: जी, एक दर्जन दवाइयां अवेलेबल है। आप देखिए 1970s में ट्रीटमेंट सिर्फ स्टेरॉयड था, उसके बाद में बीटा इंटरफेरॉन आया, ग्लैटियमर एसिडेट आई, फिंगोलीमोड आ गया, टेरीफ्लुनामाइड, और अब बहुत सारे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आ गए हैं। तो अब एक वे फॉरवर्ड है, कोई ऐसी दवाई जो कि जो माइलिन चला गया है या जो इंसुलेशन चला गया है उसको रिप्लेस करे, इस पर काम हो रहा है। और सस्पेक्टेड है कि एब्स्टीन बायर वायरस जो है वो एक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ये सस्पिशन है, तो उसके लिए एक वैक्सीन डेवलपमेंट अभी चल रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में नेक्स्ट 5 to 10 years में कोई ना कोई और ब्रेक थ्रू आए
0: जी, तो अच्छी खबर आ सकती है। और रिसर्च इसीलिए की जाती है कि कुछ ऐसा हो जिससे कि उस बीमारी पर हम काबू पा सकें, और ऐसा भी बहुत शीघ्र होगा। डॉक्टर आशु, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने कहा कि फिजिकल एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, विटामिन डी, और आप एक रूटीन देते हैं पेशेंट्स को, केयर गिवर्स को समझाते हैं किस तरह से, पर मेंटल हेल्थ कितना जरूरी होता है इस तरह के पेशेंट्स के लिए?
2: मेंटल हेल्थ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी ऑफ दिस लॉन्ग टर्म इलनेसेस बेसिकली। तो राइट फ्रॉम अ पॉजिटिव एटीट्यूड बेसिकली टू बी विद पॉजिटिव पीपल, और इसमें हम अपने आप को जितना बिजी रखेंगे अदर एक्टिविटीज में, बिकॉज देयर इज लाइफ बियॉन्ड दिस। इनिशियली जरूर हम लोग कई बार शॉक फेज में चले जाते हैं कि क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम व्हेन वी सी कि इसका बहुत इसमें इसके साथ भी लाइफ बहुत अच्छी तरह से दी जा सकती है, बट हमें थोड़ा सा उसके अंदर अपना एक डिसिप्लिन, एक अपना मेंटल एंड फिजिकल एक्सरसाइज, थोड़ा योगा, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा डाइट कंट्रोल, थोड़ा अपने को एक्वा थेरेपी, अपने जो काम है हम उसमें रखें, अपना जो हमारी फैमिली है, पेरेंट्स हैं, स्पाउस है, बच्चे हैं, उनके साथ हम एक हेल्दी रिलेशन रखें अपने को, एंड स्टार्ट कीप लुकिंग फॉर दी व्हाट आर दी अदर एवेन्यूज अवेलेबल, और उसके साथ में एक बेसिक मिनिमम अपना डॉक्टर का जो विजिट है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास तब जाते हैं जबकि प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो जो भी रूटीन हमारा है एक डॉक्टर के विजिट का, उसको हम ध्यान रखें, और छोटे से छोटा सिम्टम अगर कोई आ रहा है उसको इग्नोर ना करें, और जो हमारा एक डिसिप्लिन है लाइफ का जिसके साथ कि हम लोग एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम लोग कर सकते हैं, तो उसके साथ हम बहुत ही हेल्दी और एक बहुत ही अच्छी लाइफ मेडिकल मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी के साथ हम लोग जी सकते हैं
0: जी। तो आज हमने बात की मल्टीपल स्क्लेरोसिस पर, और हमारे साथ हमारे दो रेडियो डॉक्टर्स रहे, डॉक्टर विकास धिकव, क्लिनिकल न्यूरो साइंटिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर आशु गुप्ता, अब हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आशु और डॉक्टर विकास आपको यहां आने के लिए, समय निकालने के लिए, और सभी लिसनर्स का धन्यवाद जो इस कार्यक्रम से जुड़े, और हमारे श्रोताओं का धन्यवाद कि आप जुड़ते हैं हमारे साथ। अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। परिधि लिख रही हैं दिल्ली से, बिग थैंक यू टू शालिनी जी एंड ऑल डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग सच अ यूजफुल इन्फॉर्मेशन, कीप इट अप, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ट्यून्ड इन टू रेनबो एंड रेडियो डॉक्टर। ऐसे ही आप जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर, हमारी हौसला अफजाई करते रहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम आपके लिए है, तो आप इसके साथ जुड़े रहिए। अब स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध

0: केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेट अफसरों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। म्यांमा के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। श्री डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से चुने जाने की संभावना है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। महीने भर चलने वाली यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्यभर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमरीका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। ये बैठक कोई स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। बैडमिंटन में सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी का मुकाबला दक्षिण कोरिया के सीओ से उंग जाए और किम वान हो से जारी है। भारतीय जोड़ी ने पहला सेट 21-19 से जीतकर बढ़त हासिल कर ली है। गुजरात टाइटंस IPL क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। एक अच्छा रोल मॉडल कैसे बने? क्या आपने कभी ऐसा बॉस के साथ काम किया है जो बहुत ज्यादा दबाव में होने के बावजूद शांत और सकारात्मक रहता हो? शायद आपने ऐसे सहकर्मी के आदर्श माने हो जो हमेशा दूसरों के लिए कुछ ज्यादा ही करता हो।

अब विचार करें कि दूसरे आपके व्यवहार को किस तरह देखते हैं। क्या आपको लगता है कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए एक अच्छे रोल मॉडल हैं? आपको शायद इसका एहसास न हो, लेकिन आपके कार्य, दृष्टिकोण, नजरिया और नैतिकता संभव आपके टीम के सदस्यों को प्रभावित कर रहे हैं और उनके द्वारा प्रतिबिंबित हो रहे हैं। आज के इस लम्हे प्रोग्राम में हम एक अच्छे रोल मॉडल बनने के लाभों पर चर्चा करेंगे तथा ये भी कि आप एक अच्छे रोल मॉडल बनने के लिए क्या कर सकते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन है कि एक रोल मॉडल क्या है, होता कौन है? मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार लोग दूसरों के व्यवहार को देखकर और उनकी नकल करके विकास करते हैं। विशेष रूप से बंडूरे ने पाया कि व्यवहार नीचे की ओर बहता है। दूसरे शब्दों में एक समूह अपने नेताओं से संकेत लेता है। इसीलिए यदि आप ईमानदारी और खुलेपन जैसे मजबूत गुणों का प्रदर्शन करते हैं तो आप अपने टीम के सदस्यों को भी इसी तरह से व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन जो लीडर बुरे व्यवहार का अभ्यास करते हैं या उसे पुरस्कृत करते हैं, वे ऐसे संस्कृति विकसित करने की संभावना रखते जिससे व्यक्ति टीम के हितों से पहले अपने हितों का प्राथमिकता देता है। अपनी टीम के लिए आदर्श बने मेरे दोस्तों। अच्छे रोल मॉडल का अपने आसपास के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उनका व्यापक सम्मान किया जाता है। संगठन ऐसे नेताओं को चाहते हैं जो दूसरों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करते हैं। इसीलिए अच्छे रोल मॉडल को पदोन्नति के लिए सबसे पहले विचार किया जाता है। उन्हें संगठन में गठबंधन बनाना भी आसान लगता है क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत ब्रांड मजबूत होती है। यदि आप एक अच्छे रोल मॉडल बनने के लिए कदम उठाते हैं, आप संभवतः एक अधिक प्रभावी टीम और व्यवसाय बना पाएंगे और आप अपने करियर को भी बढ़ावा देंगे। अच्छे रोल मॉडल आमतौर पर कुछ ऐसे व्यक्तित्व लक्षण या गुण प्रदर्शित करते हैं जैसे आत्म जागरूकता, सकारात्मकता, विनम्रता, सहानुभूति, व्यवसायिकता और ईमानदारी। आइए इनके बारे में अधिक विस्तार से जानें आज के लम्हे प्रोग्राम में आपके आरजे चेतन से। दोस्तों, आत्म जागरूकता, क्या आप जानते हैं कि आप कार्यस्थल पर क्या भूमिका निभा रहे हैं? आप अपनी आत्म जागरूकता बढ़ाकर इसका पता लगा सकते हैं। ये आपके व्यवहार और दूसरों पर आपके प्रभाव पर ईमानदारी और उत्पादकता से विचार करने की क्षमता है। एक बार जब आप खुद को और अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं तो आप आत्मनियंत्रता और आत्मनियम भी विकसित कर सकते हैं और इस तरह से अपनी भावनाओं और भलाइयों का प्रबंधित करके आप जो करते हैं और जिस तरह से करते हैं उसे अपने मूल्य के साथ संरेखित करने की क्षमता रखेंगे तो आप खुद के प्रति अधिक सच्चे होंगे और दूसरों को अधिक सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। बदले में आपके संभवतः सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी। नकारात्मक लोग उन लोगों को नीचा गिरा देते हैं जिन्हें उनके साथ काम करना होता है। इसके विपरीत सकारात्मक दृष्टिकोण एक ऊर्जावान काम करने वाली टीम भावना विकसित करने में मदद कर सकता है। कोई भी व्यक्ति हर समय खुश नहीं रह सकता, लेकिन आप मुश्किल परिस्थितियों में अवसरों की तलाश कर सकते हैं। इसीलिए इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आपकी टीम किसी भी स्थिति में क्या कर सकती है, न कि इस बात पर कि वो क्या नहीं कर सकती है, और उन सफलताओं पर निर्माण करने में उनकी मदद करें। अच्छे रोल मॉडल विनम्रता का अभ्यास करता है। जब उन्हें यकीन नहीं होता कि क्या करना है तो वे ईमानदार होता है, सवाल पूछने और सीखने में खुश होता है, वह अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने में सहज होता है, वह जहां भी श्रेय देना चाहिए देता है और वे रैंक या अनुभव के पीछे नहीं छिपता। सहानुभूति ने अपने लोगों की भावनात्मक जागृति को समझना शामिल है। आप ध्यानपूर्वक सुनने का उपयोग करके सहानुभूति विकसित कर सकते हैं ताकि आप वास्तव में सुन सके और समझ सके कि लोग आपको क्या बता रहे हैं। जितना अधिक आप इस तरह से टीम के सदस्यों की पहचान करने और उनसे जुड़ने में सक्षम होंगे उतना ही अधिक विश्वास आप बन पाएंगे और वे संबंध उतना ही मजबूत होगा। व्यवसायिकता का प्रदर्शन करने का मतलब है अपने कार्यों और अपने काम को एक उत्कृष्ट मानक पर रखना।
इसमें सिर्फ काम पूरा करना ही शामिल नहीं है, ये ईमानदारी और दूसरों के प्रति सम्मान जैसे गहरे व्यक्तिगत गुणों को दर्शाता है। आप अपनी व्यक्तित्व को कुछ सरल कार्यों से प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे समय पर बैठक में पहुंचना, उचित ढंग से कपड़े पहनना और बातचीत करना, तथा विश्वसनीय और कर्तव्यनिष्ठ होना। ईमानदारी का मतलब है सही कारणों से सही काम करना। भले ही इसका मतलब सबसे आसान विकल्प न अपनाना हो, अगर आप ईमानदार और प्रामाणिकता और नैतिक नेतृत्व के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हैं, तो आपकी टीम के सदस्य संभवतः अच्छे टीम वर्क की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता का साथ प्रतिक्रिया देंगे। ईमानदारी के साथ जीना एक अच्छे रोल मॉडल बनने की आधारशील है, क्योंकि ये उन गुणों में से एक है जो व्यक्ति और संगठन अपने नेताओं में सबसे ज्यादा तलाशता है। इस महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारा प्रोग्राम लम्हे सुनते रहिए आपके आरजे चेतन से। आपके पास एक अच्छा रोल मॉडल बनने के लिए जरूरी गुण हो सकते हैं, लेकिन आप इन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रभाव के लिए व्यवहार में कैसे लाएंगे? अपनी टीम के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करना। किसी भी रोल मॉडल के लिए मजबूत संचार कौशल महत्वपूर्ण है। वे आपको उच्च गुणवत्ता वाले कनेक्शन को बढ़ावा देना और विश्वास और सम्मान के आधार पर संबंध बनाने में मदद करेंगे। अपने संगठन के मूल्य का समर्थन करना। अच्छे रोल मॉडल अपने नियुक्त के काम करने के वंचित तरीकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना और अपने टीम के सदस्यों के व्यवहार को उसके अनुसार निर्देशित करते हैं। उदाहरण के लिए, आप कंपनी के कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रम के लिए स्वयं सेवक बन सकते हैं। ये किसी सहकर्मी के समावेश और जुड़ाव का समर्थन कर सकते हैं। उन्हें प्रासंगिक कर्मचारी संसाधन समूह में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करके, यदि वे मौजूद हैं, आप किसी भी बुरे व्यवहार से तुरंत और प्रभावी ढंग से निपटना भी सुनिश्चित करेंगे। सहयोगात्मक रूप से काम करना। अच्छे टीम खिलाड़ी अपने अहंकार को किनारे रखते हैं और समूह की भलाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक रोल मॉडल के रूप में ये एक ऐसे रवैया है जैसे आप निश्चित रूप में अपनाएंगे। एक कौशल मैट्रिक्स बनाइए और अपनी और अपने लोगों की ताकत, कमजोरियां और पसंदीदा कार्यशैली का आंकलन करें। फिर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त टीम की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सौंपें। आप सभी अधिक सफल होंगे। नवाचार का समर्थन करना। जब नए कौशल हासिल करने और नए तकनीकों को अपनाने की बात आती है, तो नेतृत्व करें जो आपके व्यवसाय में मदद करेंगे। एक रोल मॉडल के रूप में यह महत्वपूर्ण है कि आप वक्र से आगे रहें। पहल और रचनात्मक दिखाने वाले लोगों को प्रोत्साहित करें। टीम के सदस्यों को स्वनिर्देशित और सामाजिक सीखने के लिए समय दें और आकांक्षाओं को व्यवहारिक कार्रवाई में बदलने के लिए उपकरणों का उपयोग करें। With this very good information, this is Chetan signing off for today in Lamhe program. I'll get back to you in our next segment. Till then, have a great time. Bye, my dear friends. दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039. I repeat 09515227039. और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. I repeat feedbackamc1@gmail.com. आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla. This program is sponsored and produced by Adventist Media Center.

फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। एक बार फिर मैं हूं सैमा आपके साथ और लेकर आई हूं आपके लिए प्रोग्राम अल्फा जैन। लेट्स डिटॉक्स। क्या कुछ है आज इस प्रोग्राम में खास? डिटॉक्स कैसे अपने आप को करना, किस तरीके से। कई बार आपकी जो सोच होती है ना, वो आपको बहुत हद तक कभी कभी ना अपने से दूर कर देती है। वो कैसे? कई बार हमारा जो वक्त होता है ना, हम सोच

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फाजन, मैं हूं सायमा आपके साथ। और सीरियसली, या तो आबाद कर दो या बर्बाद कर दो। कई बार होता है ना कि हम अपनी जो हकीकत होती है ना, उसके जिम्मेदार खुद होते हैं। कैसे हकीकत? क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि यार वक्त हम सबको देते हैं, लेकिन कोई हमारे वक्त की कदर ही नहीं करता। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा वक्त देते हैं, और ज़रूरत से ज़्यादा वक्त देना ना, वो अपने लिए ही कभी कभी परेशानी खड़ी कर देता है। आपकी जो अहमियत होती है ना, वो लोग आपकी जो कदर होती है, अहमियत होती है, उसको करना बंद कर देते हैं, कदर करना बंद कर देते हैं। और वो सोचते हैं भाई ये तो जब बोलो तभी हाजिर है, जब कुछ कहो तभी ये काम करने के लिए तैयार है, और कभी भी ये इंसान मना ही नहीं करता है। तो ऐसे में आपकी जो कद्र होती है ना, वो बहुत हद तक कम होती चली जाती है। और अपने आप को किसी चीज़ से बाहर निकालना, अपने आप के लिए जीना, वो बहुत ज़रूरी होता है। अपनी अहमियत को समझना, खुद को समझना बहुत ज़रूरी होता है। और जब हम अपने आप को नहीं समझते हैं, अपनी अहमियत खुद नहीं समझते हैं, अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं, तब दूसरे आपका फ़ायदा उठाते हैं। आपकी अहमियत कम हो जाती है क्योंकि आप खुद ही नहीं समझ पाते, सोच नहीं पाते, और हमेशा अच्छा करने के चक्कर में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? ज़रूर होता होगा। कहीं ना कहीं आप भी ज़रूर अपने साथ कुछ ना कुछ ऐसा कर देते होंगे, लेकिन वक्त रहते अगर हम समझ जाएँ, वक्त रहते कभी हम कहते हैं ना कि कुछ गलतियाँ करके सुधर जाएँ, तो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी। खूबसूरत गानों का सफर भी लगातार आकाशवाणी रेनबो पर बना रहेगा, दिल से दिल तक।

0: वाटर बीच तक।
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
0: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
0: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
3: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
2: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
4: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
5: ठीक है।
4: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा है इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
3: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
2: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
6: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
2: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
3: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
2: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
3: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
2: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
3: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
2: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
3: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

एक छोटे से ब्रेक के बाद सैम फिर आपके साथ लेकर आई हम अगले प्रोग्राम अल्फा जैन, और फिलहाल खूबसूरत गानों का सफर भी लगातार आकाशवाणी रेनबो पर बना रहेगा दिल से दिल तक। एक और प्यारा सा साउंड ट्रैक आपके लिए।

बेहद खूबसूरत गाना सीरियसली है ना, चल चल मेरे संग चल। सीरियसली संग चलना बहुत अच्छा लगता है जब कोई आपका साथ देता है, आपके साथ रहता है, लेकिन कई बार साथ चलते चलते क्या होता है ना कि हम भूल जाते हैं कि दूसरा शायद हमें वो साथ नहीं दे पा रहा, लेकिन हम उस साथ को बराबर निभाते जा रहे हैं। फिलहाल ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वक्त एक बार फिर याद दिला देती हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा किसी को देना और अपने अहमियत को, अपनी कदर को कम करवा देने की जो एक हम खुद ब खुद कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं हम खुद उस चीज़ के शिकार बन जाते हैं, हम उस चीज़ को खुद अपने ऊपर लागू कर लेते हैं कि भाई हम दूसरे को ज़्यादा वक्त देंगे, दूसरे की कदर ज़्यादा करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपनी कदर भूल जाते हैं, अपना करियर भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं और हमेशा ये कोशिश करते हैं कि दूसरों के लिए जीना ही जीना होता है। दूसरों के लिए जीना चाहिए, लेकिन कई बार होता है ना कि आप अपने आप को भूल कर दूसरे के लिए जीने लगे, ऐसा करना भी सही नहीं होता है। उस चीज़ को अपने आप के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। लोगों को हमेशा कोशिश करनी चाहिए या किसी को भी हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वक्त उतना ही दीजिए दूसरे को जितना कोई आपको समझ सके, आपके वक्त को समझ सके, आपको समझ सके। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को समझना। जब तक आप अपने आप को नहीं समझते ना, तब तक वक्त आप किसी को कितना भी दीजिए कोई आपको नहीं समझ सकता। फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी, खूबसूरत गानों का सफर भी लगातार आकाशवाणी रेनबो पर बना रहेगा, दिल से दिल तक।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फा जान, मैं हूं सायमा आपके साथ। और वक्त बहुत ज़रूरी है अपने लिए, आपके लिए, और कहते हैं ना दूसरों के लिए भी, लेकिन जब आप अपने वक्त को कीमती नहीं समझते तो दूसरा भी आपके वक्त को कीमती नहीं समझता। कई बार हम भूल जाते हैं, ये सोचते रहते हैं कि हम दूसरों के लिए जिए और दूसरों के लिए जीते रहें, लेकिन अपने आप को भूल जाना बहुत हद तक अपने आप को ही दिमागी तौर पे परेशानी देने का सबब बन जाता है। हम सोचते हैं कि हमने उसके लिए अच्छा किया लेकिन उसने हमारे लिए क्या किया, हमने उसके साथ ये बिहेव अच्छा किया था लेकिन उसने हमें सबके बीच में ऐसा कह दिया, या हमने उसके लिए वक्त निकाला, हमने उसके ये काम किए लेकिन उसने हमारे लिए ऐसा नहीं किया। तो चीज़ें होती हैं ना कहीं अपने आप को परेशानी में डालने वाली, ऐसी परेशानी के सबब भी आप खुद ही बनते हैं। और अपने आप को इन चीज़ों से बाहर निकालना बेहद ज़रूरी होता है। जब तक आप अपने लिए जीना नहीं सीखते तब तक आप हमेशा कहीं ना कहीं दिमागी और दिली तौर पर लोगों से जुड़ने के साथ साथ परेशानी भी मोल ले लेते हैं। और जब परेशानी आपको दो चार कर देती है तब फिर कहीं ना कहीं अपने आप से ही सवाल उठाने शुरू कर देते हैं कि हमने ऐसा किया था, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। अपने आप को समझने के लिए अपने आप को वक्त देना बेहद ज़रूरी है। दूसरों के लिए भी वक्त होना चाहिए लेकिन अपने आप को जानना, अपने लिए जीना, अपने आप के लिए खुश रहना, अपने लिए वक्त निकालना बेहद ज़रूरी है। लेट्स डिटॉक्स फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी। और कहते हैं ना कि प्रोग्राम में खूबसूरत गानों का सफर भी लगातार आकाशवाणी रेनो पर बना रहेगा, दिल से दिल तक।

0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फा जान। वक्त की कमी भी है मेरे पास, लेकिन हाँ आज हम बात कर रहे हैं अपने आप की अहमियत के बारे में। दूसरों को वक्त देते देते कभी हम अपने आप की अहमियत भूल जाते हैं और ऐसे में खुद अपने आप को परेशान कर बैठते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी के लिए सोचते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप से ज़्यादा किसी के बारे में सोचते हैं, किसी को ध्यान रखते हैं, किसी का ख्याल रखते हैं और फिर किसी के एक बार कहने पर दौड़े चले जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपनी अहमियत, अपनी कद्र कम कर देते हैं, कम करवा देते हैं उन लोगों की नज़रों में जो आपके लिए बहुत अहम होते हैं। फिलहाल अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है, कभी ना कहना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार होता है ना कि हम हर बात में हाँ हाँ करते रहते हैं और लोग समझते हैं कि भाई ये कभी मना नहीं करेगा, याद हमेशा करते हैं लेकिन आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ऐसे में कभी ना करने की भी कोशिश करनी चाहिए। कभी वक्त निकालने के बावजूद भी आपको जब दुख मिलता है तो सोचने की ज़रूरत है कि हम में कहीं तो कुछ कमी है जिसे हमें सुधारने की ज़रूरत है। हमें अपने आप के लिए काम करने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को वक्त देने की ज़रूरत है और कभी कभी दूसरों को ना कहने के लिए भी सोचना चाहिए। हमेशा हर किसी के लिए हर वक्त हर मोड़ पर खड़े रहना भी कहीं ना कहीं आपके लिए ही परेशानी का सबब बन जाता है। फिलहाल इसी तरह तो बातें होती रहेंगी, लेकिन वक्त की कमी भी है मेरे पास, मुझे जाना भी है। इस वादे के साथ अगली बार फिर आऊंगी एक नए प्रोग्राम को नए अंदाज में लेकर के। तब तक आप बने रहिए आकाशवाणी रेनबो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, यह अभियान अब भी जारी है।
1: As far as Operation Sindoor is concerned,
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। म्यांमा के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक कर रहे हैं। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाना है। श्री DK कुमार शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से चुने जाने की संभावना है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। महीने भर चलने वाली ये प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर की 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि अगर ईरान के साथ समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका की सेना उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेग्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद है। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्रीय संचालन समिति NSC ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम ITI क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण निवेश योजना SIPO को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत स्वीकृत होने वाली पहली SIP है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के तहत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह मंजूरी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित तीसरी NSC बैठक के दौरान दी गई। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित लोहम का दौरा किया। लोहम देश के प्रमुख उद्यमों में से एक है जो लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है। इस दौरान श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में आज भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी ने दक्षिण कोरिया के सियो सेंग जाए और किम वॉन हो को 21-19, 21-18 से हराया। वहीं ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी प्रतियोगिता से बाहर हो गई। सेमीफाइनल में आज भारतीय जोड़ी को जापान की साइका होबारा और युइची सिमोगामी ने हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, খন্তেক পাছতে ক্ৰমে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: ये आकाशवाणी है, अब आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी के निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
2: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके

0: से डेवलप किया।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में होना चाहिए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ नाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए, जहां महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने केरलम में मादक पदार्थों के खिलाफ समन्वित अभियान के अंतर्गत 24 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए हैं। चक्रव्यूह अभियान के अंतर्गत कोच्चि, मलप्पुरम और तिरुवनंतपुरम में मेथक्वालोन, मेथमफेटामाइन और हशीश का तेल सहित कई मादक पदार्थ जब्त किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल पर किया जाएगा। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ से उंग जाए और किम वॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: काम में आए और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
1: म्यांमारस्य राष्ट्रपति मिन आंग लाइंग इत्यसौ अद्य पंचदिवसीय भारत यात्रायै बिहारस्य गयां संप्राप्तः। तेन बोधगया स्थितस्य विश्व प्रसिद्धस्य महाबोधि मंदिरस्य दर्शनं विहितम्। राष्ट्रपतिना तत्र बोधि वृक्षस्य अधः प्रार्थना अपि कृता। अत्रावसरे म्यांमारस्य राष्ट्रपतिना बकरावर स्थिते ऐतिहासिके सुजाता मंदिरे शिरं नत्वा बोधगया स्थितस्य बर्मी मठस्य यात्रा कृता। राष्ट्रपतिना सह वरिष्ठाधिकारिणः बौद्ध प्रतिनिधयः उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलम् अपि अवर्तत। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। ऋतुविज्ञान विभागेन उक्तं यत् वायुमण्डलीय परिस्थितिभिः अनुमीयते यत् दक्षिणपश्चिम प्राविट् आगामिषु चतुष्पञ्च दिनेषु केरलस्य तमिलनाडोः च कतिपय भागेषु आगमिष्यति। अरबसागरे बंगालखात्यां लक्षद्वीपे कन्याकुमार्यां च प्राविट् अग्रे समेधते। ऋतुविज्ञान विभागेन केरलस्य अष्टजनपदेषु अद्य प्रचण्ड वृष्टेः पूर्वानुमानं विधाय पीतवर्ण सञ्चेतना प्रसारिता। ऋतोः प्रतिकूलता कारणेन जून मासस्य तृतीय दिनं यावत् मत्स्यजीविनः केरल लक्षद्वीप तटयोः समुद्रे उद्यमं न कुर्वन्तु इति परामर्शः अपि प्रदत्तः। सेनाप्रमुखः जनरल उपेन्द्र द्विवेदी अवोचत् यत् भारतीय सशस्त्र बलानि उच्चस्तरीय सतर्कतायां विद्यन्ते। आवश्यकता विद्यते सति ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इति सिंदूराभियानस्य द्वितीय चरणाय सन्नद्धानि सैन्यबलानि वर्तन्ते। पुणे नगरस्य खडकवासला स्थितायां राष्ट्रीय रक्षाकादम्यां स्नातकान् सार्धैकशततमस्य दलस्य पासिंग आउट परेड इति प्रयाणं सम्बोधयता जनरल द्विवेदिना उक्तं यत् सिन्दूराभियाने दृढसंकल्पेन प्रत्युत्तरप्रदानस्य क्षमता प्रदर्शिता। तेनोक्तं यत् एतत् अभियानम् इदानीम् अपि सन्ततं प्रवर्तते। जनरल उवेदी अवोचत् यत् सिन्दूराभियाने भारतीय सैन्यबलानां मध्ये तारतम्यम् अवलोकितम्। सममेव वयं भविष्यकालाय आत्मानं सन्नद्धं कुर्महे। सेनाप्रमुखेण स्नातकाः व्यावसायिकनेतृत्वस्य राष्ट्रसेवायाः च सर्वोच्चमानकान् यथावत् प्रवर्तितुम् आकारिताः।
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्वः प्रातः 11 वादने आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे जनैः साकं स्वविचारान् प्रकटयिष्यति। कार्यक्रमोऽयं मासिक रेडियो कार्यक्रमस्य 34th प्रभागः वर्तते। अयं कार्यक्रमः आकाशवाणी दूरदर्शनयोः अन्तर्जालीय पटले प्रसारयिष्यते। एतदतिरिच्य कार्यक्रमोऽयं आकाशवाण्याः अन्तर्जालीय वेबफलकं समेत्य न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इति तन्त्रांशे अपि उपलब्धः भविष्यति। प्रमुखः रक्षाध्यक्षः जनरल अनिल चौहानः अद्य नवदिल्लीस्थे राष्ट्रिय समर स्मारके सैन्यत्रयेण प्रदत्तेन गार्ड ऑफ ऑनर इति सम्मानेन सह सैन्य सेवाभ्यः निवृत्तिं स्व्यकरोत्। अयं समारोहः देशस्य सर्वोच्च सैन्याधिकारी रूपेण तदीय विशिष्ट कार्यकालस्य समापनस्य प्रतीकः अवर्तत। समर स्मारके पुष्पाञ्जलिं समर्प्य जनरल चौहानेन उक्तं यत् सैन्यत्रयस्य गार्ड ऑफ ऑनर इति सम्मानेन सह सेवानिवृत्तिः तस्मै अत्यन्तं सम्मानप्रदं वर्तते। जनरल अनिल चौहानः गतशताब्दस्य 81वें वर्षे भारतीय सेनायां सेवाम् अवाप्य 40 वर्षेषु देशसेवायां महत्वपूर्ण पदेषु कार्यम् अकरोत्। लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमण्यम् जनरल अनिल चौहानस्य स्थानं स्वीकरिष्यति।

0: अमेरिकायाः रक्षामन्त्री पीट हेग्सेथ इत्यसौ अवोचत् यत् यदि सन्धेः प्रयासाः विफलाः भविष्यन्ति चेत् अमेरिकायाः सेना ईरानं विरुध्य सैन्यकार्याचरणं विधातुं पूर्णरूपेण सन्नद्धा वर्तते। अल्पसंख्यक कार्यमंत्री किरेन रिजिजू अद्य सूचितवान् यत् प्रथमवारं भारतीय हज मिशन संस्थया हज समन्वयस्य संचारस्य च उत्कृष्टतायै सऊदी हज उमराह मंत्रालययोः प्रतिष्ठितौ लाबाट्यूम पुरस्कारौ प्राप्तौ। सामाजिक संचार माध्यमेन श्री रिजिजू अकथयत् यत् 26,000 वर्षस्य हज यात्रायाः मुख्य चरणस्य सफलता अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालयस्य भारतीय हज समित्याः सऊदी अरब देशे भारतीय राजदूतस्य नेतृत्वे भारतीय हज मिशन इत्यस्य जेद्दाह नगरस्य महाव्यवस्थापकस्य च मध्ये अविच्छिन्न समन्वयं प्रतिबिम्बयति। बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति स्पर्धायां भारतस्य सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी चिराग सेट्टी इत्यनयोः युगलं निर्णायक चक्रे प्रविष्टम्। उपांत्य चक्रे भारतीय दलेन दक्षिण कोरिया दलं पराजितम्। महिलानां अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडायां अद्य भारत इंग्लैंड दलयोः द्वितीया 20-20 स्पर्धा भविष्यति। इयं स्पर्धा ब्रिस्टल नगरे भविष्यति। भारतीय समयानुसारेण सायं 7 स्पर्धा आरप्स्यते। इति वार्ताः।
1: বাতৰি পাছতে উভতি আহিছো যুৱবাণীৰ অনুষ্ঠানৰ মজিয়ালৈ। আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়াম এভৰ 299.9 মিটাৰত 1035 কিলোহাৰ্টজ আৰু ডি আৰ এম ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ 1026 কিলোহাৰ্টজত আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পৰা। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এতিয়া আগবঢ়াইছো কস্তুৰী সোণোৱালৰ কণ্ঠৰ আধুনিক গীত।

0: আছে। উল্লেখযোগ্য যে সদ্য সমাপ্ত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টিৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে অৱতীৰ্ণ হোৱা মৈনাক পাত্ৰই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰশান্ত ফুকনৰ হাতত পৰাজিত হৈছিল। ব্যক্তিগত কাৰণত তেওঁ দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি দলৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈলৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। নগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত জিলা মহিলা আৰু শিশু বিকাশ বিভাগৰ জিলা মহিলা সবলীকৰণ কেন্দ্ৰই বেটী বচাও বেটী পঢ়াও অভিযানৰ অধীনত ঋতুস্ৰাৱ সম্পৰ্কে থকা অন্ধবিশ্বাস আৰু বাধা নিষেধ নাইকিয়া কৰি মহিলা তথা কিশোৰীসকলৰ বাবে সন্মানেৰে জীয়াই থকাৰ এটা অনুকূল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাক মূল বিষয়বস্তু হিচাপে লৈ 2026 বৰ্ষৰ ঋতুস্ৰাৱ অনাময় ব্যৱস্থা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। অনুষ্ঠানৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়া আৰু সমল ব্যক্তিসকলে ঋতুস্ৰাৱ অনাময় ব্যৱস্থাপনাৰ বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কাইলৈ আকাশবাণী মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে দেশ বিদেশৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে নিজৰ মনৰ ভাৱ বিনিময় কৰিব। এয়া হ'ব অনুষ্ঠানটোৰ 134 সংখ্যক খণ্ড। এই অনুষ্ঠান আকাশবাণী আৰু দূৰদৰ্শনৰ আটাইবোৰ নেটৱৰ্কৰ উপৰি আকাশবাণী ৱেবছাইট আৰু নিউজ অন AIR মোবাইল এপৰ জৰিয়তে শুনিবলৈ পোৱা যাব। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগেয়ে প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। ৰাজ্যত লোকপিয়ল সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰাৰ বাবে লোকপিয়ল সঞ্চালকালয়ে প্ৰাৰম্ভিক প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ। অসম বিধানসভা সচিবালয়ে বিত্তীয় অনিয়মৰ অভিযোগৰ তদন্তৰ বাবে সমিতি গঠন কৰা হ'ব বুলি অধ্যক্ষ ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ প্ৰকাশ। অসম সাহিত্য সভাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে 1993 চনত আবণ্টন কৰা 50 বিঘা ভূমি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে সভাপতি আৰু প্ৰধান সম্পাদকৰ বৈঠক। গুৱাহাটী মহানগৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ মান উন্নত কৰাৰ বাবে স্বচ্ছতা প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন আৰু কেন্দ্ৰীয় যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী ডঃ মনসুখ মান্দাভিয়াৰ আসন্ন 39 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া মহোৎসৱ 2027ৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত শ্বিলঙত পৰ্যালোচনা।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই সৰ ফিৰোজী। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में डीके शिव कुमार को नया नेता चुना गया है। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। विधायकों ने उन्हें अपना नेता और अगला मुख्यमंत्री चुना है। श्री शिव कुमार को नेता चुने जाने के प्रस्ताव को पारित करने के बाद कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने बैठक में पार्टी विधायकों को आधिकारिक रूप से इसकी सूचना दी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांव को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांव को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार है। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम ITI क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल नेपॉन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी की निवेश योजना SIP को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली SIP है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित और परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में

0: एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम, लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सियो सेंग जाए और किम वॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। In Karnataka, the Congress Legislature Party meeting in Vidhan Sauda has elected D.K. Shivakumar as their new leader after the resignation of Siddaramaiah. In this regard, the legislators adopted the resolution put forward by Siddaramaiah and Dr. G. Parameshwar. A press release issued by D.K. Shivakumar's office confirmed that the legislators have elected him as their leader and the next chief minister. After adopting the resolution to elect Mr. Shivakumar as the leader, the message was officially announced to all the Congress legislators by AICC General Secretary K.C. Venugopal in the meeting. Briefing the media persons later in Bengaluru, Mr. Venugopal announced that D.K. Shivakumar was elected unanimously by the party legislators and he will visit the governor to stake claim to form the government. He also announced that the swearing-in ceremony will be held on 3rd June. Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan today said that the Khet Bachao Abhiyan should be made a comprehensive national campaign connecting farms, farmers and villages. The minister said this while chairing a high-level meeting regarding the preparations of the Khet Bachao Abhiyan in New Delhi. During the meeting, he said that the focus of the campaign will be on balanced and judicious use of fertilizers, timely advice to farmers in view of weather-related challenges, active participation at panchayat level, and delivering the benefits of the schemes directly to the villages. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashvani tomorrow at 11 a.m. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website and the News on Air mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. President of Myanmar U Mi Wang Ling arrived in New Delhi this evening on a 5-day visit to India. Union Minister of State for External Affairs Kirti Vardhan Singh received him at the airport. Earlier today, the President of Myanmar visited Gaya in Bihar and prayed at Mahabodhi Temple. He is accompanied by a high-level delegation comprising several cabinet ministers, senior officials and business leaders. In Tamil Nadu, AIADMK Whip Agri S.S. Krishnamurthy today met the state governor Rajendra Vishwanath Arlekar and requested him to take action against the alleged

0: ভজন অনুষ্ঠানটি ইমানতে অন্ত পৰিল। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পাছতে 8:45 সমাচাৰ সন্ধ্যা, 9:00 নিউজ এট 9 আৰু 9:15 স্পটলাইট দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
2: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरामैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC मेरोगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरामैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक CLP मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि DK शिवकुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और DK शिवकुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब DK शिवकुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य June 3 को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी के सचेतक एग्री SS कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ TVK द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना DMK से इस्तीफा देने के तुरंत बाद TVK में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए TVK सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में CP ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
4: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
5: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ टॉन के लिए नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि यह निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
2: जहां तक ऑपरेशन सिंदूर की

0: बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम ITI क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना SIP को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली SIP है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। पर अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम वॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गए। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहू मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का

खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।